प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख

का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

जी जे चे आर तिला मनाईकांत परिंकांत क्रेडिट जांका पांजांग इंडिया जे चे आर मनाईकांत परिंकांत पनरवित माता उवांग असिंगदान माता उवांग लोकल सातु तिंका दारी बेबे बे मंजादी ए साम्बिल नंपरताना कान प्रोसेस स्टाबल जे चे एर जुगा मनाईकांत बतास अतास नगारा इंडिया सातु तिंकात मंजारी आ कमंत्रियान कौआंगान मंगतकान बाबा पनिंकातान परिंकात इनी अंचरमिनकान पंबुतुहान इकोनॉमी इंडिया यांग सोलिड इफेक्टिविटास कबिजान इकोनॉमी दाला मंपर कुआत फाउंडेसी पर तुम्बुहान दान परिंकातान का सेहतान सिस्टम कौआंगान कमंत्रियान मंगतकान बाबा पनिंकातान परिंकात इनी दर्जारी दी तेंगा लिंगुंगान ग्लोबल यांग मनतकान दान मंगारिस बाबा ही पंगुआतान वर्क लांजुतान फंडामेंटल इकोनॉमी इंडिया यंगडी डुडुंगान ओले पर तुम्बुहान वर्क लांजुतान कभी जान इकोनॉमी हम इफेक्टिव पनिंग कातान क्वालिटास फिक्स दान सिस्टम का उंगान यंग लब्बी कुआत दराम सबुआ पर नतायान जे चे एर मंचतादत बाबा इकोनॉमी इंडिया तेला मंपर ताना कान तिंकात पर तुम्बुहान यंग तिंगी डी डुकुंग ओले कोमुसी स्वस्था यांक हुआ दन इन्वेस्टासी पब्लिक लिम्बागा तरसे बुद जुगा मनेरोती इम्प्लीमेंटासी बरकल अंजुतान कभी जान पमरिंता इंडिया तरमासुक पर पंगे बांगान इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक डिजिटल दन इम्प्लीमेंटासी पाचाक बारांग दन जासा यांग तेला मंपर कुआत फोंडूसी इकोनॉमी इंडिया कुंजुगान पे एम बेल्जिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दन प्रधानमंत्री बेल्जिया बाद प्रधानमंत्री डे वेवर अकान मंगडगान पमिचारान बिलेट्रल दि न्यू दिल्ली हारी इनी कदियो पमिम्पिम अकान मंबहा सलुरु स्पेक्ट्रम हुमंगान बिलेट्रल सरता ईसु ईसु रीगनल दन क्लोफल यांग मंजादी का पंतिंगान बरसामा प्रधानमंत्री बेल्गिया तिब्बती इबु कुत्त नगाडा तादी मलाम उन्तु कुंजुंगान तिगा हारी का इंडिया प्रधानमंत्री डे वेवर दि दामपिंकी ओले मंत्री परतहानान बेल्गिया थियो फ्रेंकेन इनी अडाला कुंजुंगान प्रतमान्या का इंडिया से जग मन्नांजबाद पाटाफर पुरी ताहुन लालू तामु कर हुरमतान इनी जुगा अकार मन्नम पाइकान पिटा तो उत्तम पारा आचारा बिजनेस कॉन्फिडेंसी इंडस्ट्री इंडिया दन कॉन्टेस पंजांजियान पडगांग बेबस इंडिया उनी यूरोपा कॉरेस्पोंडेंस कामे मलापोरा कान बाबा कुंजुंगान इनी अकान मंबरीकान का संपतान उन्तुक लंबी मंपर कुआत का मित्रान इंडिया बेल्गिया धर्मा माजुकान कर्जा सामा दे विदांग विदांग यंग मंजादी कम प्रतिगान बरसामा धर्मासुक पर डगांग धन इन्वेस्टासी पर तहनान दान किया मानान सरता इनर्गी तरबू कान इंडिया धन बेल्गिया ममिल की इकतान सजारा यांग मंबतेंगान लबीदारी तीगा आबाद बेल्गिया अडाला साला सातु नगारा उरोपा परतमा यांग मंजालीन हुबोगान डिप्लोमैटिक दिंगान इंडिया यांग वर्डे का पड़ा सेप्टेम्बर सरेबू सम्मेलन रातुस एम्पात पुलुतुजु बेल्जिया मरुपकान मित्रा इकोनॉमी पंतिंग बागी इंडिया दी यूरोपा पर डागांगांग बिलाट्रल मंचपाई लबी दारी तिगा बिलास मिलियर दोफर पारताहुन दुआ दुआरिबू दुआ पुलु लीमा हिंगा दुआरिबू दुआ पुलु एनाम पर डागांगांग बर्लिन निंगान अंतर वरब सबगाई पुसत बर्लियान ग्लोबल उत्तामा तितप मंजादी कॉम्पोनेंट पंतिंग दारे पर डगांग बिलेट्रल बेल्गिया जुगा मरुपकान सुम्बर इन्वेस्टासी पंतिंग दी इंडिया आरुस मासुक एफ दे ई दारी बेल्गिया मंचपाई सकितर एम्पात को मदुआ मिले डॉलर अंतारा अप्रैल दुआ रिबू दन दिसंबर दुआ रिबू दुआ पुलुलीमा कर्जा सामा इल्म पंगता हूं टेक्नोलॉजी दन इनोवासी मरुपकान पिलर पंतिंग का मंत्रियान इनी दन इंडिया सरता बेल्गिया तेला मंगम वाकान कर्जा सामादी बिरांग इनर्गी तरबारुकान टेक्नोलॉजी बरसी दन बर कलांजुतान प्रेसिडेंट अमेरिका सरिकात डोनाल्ड ट्रंप मंगादकान दिया सियाप उन्तुक मंगांडुकान प्रतिमुहान पुंचक लाइन या देंगान प्रेसिडेंट रूसिया व्लादिमीर पुतिन तेतापि हान्या कतिका मॉस्को सियाप उन्तुक बकरजा मनुजू कसे पक्तान पडमयान उन्तुक मंगा आखिरी पड़ांग यांग सेडांग बड़लांग थुंग उक्रेना ट्रंप मंगदकान दिया इंगिंग अमेरिका सरिकत मंपर तानाकान हुबुंगान बाइक दी रूसिया उक्रेना दिंगान अलासान बाबा पनिंगातान हुबुंगान जुगा अकान बर्पमानफात बागी बिजनेस प्रेसिडेंट अमेरिका सरिकत सलंजुतान या मंगदक मनतकान बाबा

0: Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on promoting Swadeshi for stronger economic growth and a self-reliant India. The participants are K.G. Suresh, senior journalist, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
3: I'm joined by Shri K.G. Suresh. Mr. Suresh, a warm welcome to you in the program.
4: Thank you.
3: And today, our topic of discussion is on Swadeshi, sustainable consumption and India's economic future. Let's now hear what Prime Minister Narendra Modi had to say about this.
5: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon. Unke sankalp shakti ke liye, unke purushart ke liye, ek samuhik shakti ka ek pratibimb hai. Duniya युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है, 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है, हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है, स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए.
3: Mr. Suresh, typically the Swadeshi movement, there was a collective action for, you know, the independence movement, the promotion of indigenous goods and institutions and the boycott of British products and establishments. How do you see Swadeshi in the context of sustainable consumption and what is India's economic future linked to it?
4: Absolutely. When the colonial masters were here, one of the thought process was that they looked at India as a great market for their products. And

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज

0: नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. X पर एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। यह रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत

0: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
1: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा, किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
3: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवी।

0: त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिरैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6वीं और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart Bart de Wever in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने की तजवीज दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के जेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोजा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मुअसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले निकात पर मुसलसल

0: ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जा बंदी को एक दर्जा बढ़ाकर बीबीए प्लस से ए माइनस कर दिया है। जेसीआर ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर ए कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जा बंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत मुआशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक मुआशी पॉलिसियों की इफादियत और मुआशी निज़ाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजारत खजाना ने कहा है कि दर्जा बंदी से मुतालिक ये इजाफा चैलेंजिंग आलमी सूरत हाल के तनाजुर में पेश आया है और इससे पायदार तरक्की, मोसर मुआशी पॉलिसियों, बेहतर मुआशी मेयार और एक मजबूत तर मुआशी निज़ाम के जरिए भारत की मुसलसल मजबूत होती मुआशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक बयान में जेसीआर ने कहा कि भारतीय मईशत ने बढ़ती निजी खपत और अवामी सरमायाकारी के जरिए ऊंची शरह तरक्की को कायम रखा है। एजेंसी ने यह भी उजागर किया कि भारतीय हुकूमत ने डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और अशिया और खिदमत टैक्स के नफाज समेत मुसलसल पॉलिसियां नाफिज की हैं जिनसे भारत की मुआशी बुनियाद मजबूत हुई है। जेसीआर ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत का मुआशी खसारा मुआशी साल 2025 में 4.7% से कम होकर मुआशी साल 2026 में 4.4% रहा। आकाशवाणी न्यूज से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मुजाफाती इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: दिशा सालियान मौत के मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा आर भोंसले पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल उनके वालिद सतीश सालियान की तरफ से दाखिल करदा शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत ने मजीद वाजे किया कि एफआईआर दर्ज करने की हिदायत का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। बेंच ने कहा कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक मुलजिम नहीं समझा जाएगा जब तक तफ्तीशी अफसर की राय में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ माकूल शुबा पैदा करने के लिए काफी वजूहात मौजूद न हों। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी एचपीवी टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ये मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनक़िद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत एचपीवी वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एनबी सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहल खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों, जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है, की मुश्तरका फोर्सेज ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। शिमाली ओडिशा में सैलाब का नया खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बालासोर जिले में सुबर्ण रेखा नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजघाट के मकाम पर दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। झारखंड में वाके गलुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बायस नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. آج مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے. جبلپور، ریوا، شہڈول اور ساگر میں بارش ہو سکتی ہے. بھوپال، گوالیئر، چمبل اور نرمدا پورم

0: डिवीजन के पास इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा मंडला में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। ख्वातीन के क्रिकेट में आज यूएई में दुबई बैनुल अक्वामी स्टेडियम में 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मस्कूरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेशल्स के पार्लियामानी वफद के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बातचीत को नुमाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के ताल्लुकात सिफारतकारी की रवायती सरहदों से बालातर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्ते हैं। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, इको टूरिज्म के मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही वर्कशॉप से खिताब करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शेरों के तहफ्फुज़ को मुकामी बिरादरियों के रोजगार और पायदार समाजी इक्तसादी तरक्की से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रिक्स इजलास के हवाले से रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, ब्रिक्स इजलास की तैयारियां तेज, दिल्ली में कारों के काफिले की रिहर्सल, ये इजलास भारत मंडपम में 11 से 13 सितम्बर को होगा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीक़ाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। शोडाउन स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 10 सेकंड। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे मनोज कुमार शर्मा द्वारा बजाए संतूर वादन का, राग रहेगा तोड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना मनोज कुमार शर्मा द्वारा संतूर वादन, राग था तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समस्याओं को हल करने, पैटर्न पहचानने और फैसले लेने के लिए इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करता है। पहले से तय और सख्त नियमों का पालन करने के बजाय AI सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाकर, कामकाज को आसान बनाकर और अकेले या छोटे बिजनेस को बड़ा करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देता है। ये बाजार में उतरने की पारंपरिक रुकावटों को कम करता है, जिससे छोटी टीमें भी वैसे ही ग्रोथ और क्षमता हासिल कर पाती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन थी। स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, इसके बारे में जानने के लिए सुनते हैं नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत।
3: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इस पत्रिका कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई बातें, नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि वे उन जानकारियों से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों को भी उसका लाभ दें। आज हम जिस विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारी पत्रिका का बहुत ही रिलीवेंट विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां पिछले 10 साल से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ध्यान दिया गया है, के सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप विकसित हुए हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं वे बैंकिंग, फिनटेक, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इनका एक विस्तृत अनुभव है, नेतृत्व का भी अनुभव रहा है और उन्होंने अपने नेतृत्व से डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या भविष्य की जो तकनीक है किस तरह से उसका लाभ उठाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अन्य लोग कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या सुझाव होंगे, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र राय जी। नागेंद्र राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आफ्टर एजुकेशन जो एक प्रोफेशन में आए और अब आप एक इंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, तो ये परिवर्तन आपने कैसे किया, ये विचार इस यात्रा के लिए कैसे आया आपके मन में?
4: बहुत सेंसिटिव प्रश्न है लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैंने जब हमारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मैंने उदयपुर में ली और कॉलेज भी वहीं से पढ़ाई की है। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो उस समय इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम IT फील्ड में आए तो हमारे को उसकी एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ा, उसमें जाना भी पड़ा, समझना भी पड़ा, वो सब हमने काम किया, लेकिन तब तक हमारे दिमाग में

0: ये भी बात नहीं थी कि हम ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे या स्टार्टअप खोलेंगे, लेकिन जब इस दौरान हमने कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया, तो इंस्पिरेशन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया में वैल्यूएबल होगा, जिससे हम कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकेंगे। वो दिमाग में रखते हुए एक कंपनी की स्थापना की हमने 2019 में, और उसी वर्ष कोविड भी आ गए थे, कोरोना काल चालू हो गया था। लेकिन हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस में जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सब ने मिलके उस पे विचार किया, उसको इस तरीके से चलाया कि हम हार ना माने और आगे बढ़ते रहें। तो एक जो सजेशंस या रिकमेंडेशन जो होगी कि एंटरप्रेन्योर्स शुरू के 3 साल तक अगर उनको कोई सफलता नहीं मिल जाती है तो वो हार मान लेते हैं। नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जो रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर सिचुएशंस हो, उनमें ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनसे ऊपर निकलना और आगे बढ़ना वही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी भी होती है और स्किल भी होती है।
1: बहुत अच्छा, आपने एक स्किल की चर्चा की। स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है, भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। निश्चित रूप से वो तभी हो सकता है जब लोग अपना एक कंपनी चलाए, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है कई तरह के आर्थिक सहयोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल जो है विश्वविद्यालयों में भी इसकी सुविधा दी गई है कि पढ़ते हुए वो इस तरह से एक बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाए, तभी जो है हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047 का वो पूरा होगा, जब आर्थिक रूप से ये समृद्ध होगा। आपने बताया कि आप किस तरह से कंपनी फाउंडर के रूप में आगे आए, आपकी जो ये कंपनी है क्या है, और ये अन्य तरह की कई सारी कंपनियां कार्य करती हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या किसी और क्षेत्र में, तो ये किस तरह अन्य से अलग है?
0: ग्लोबल विजन को लेकर हम 2019 में चालू हुए थे और आज 4 देशों में अपना काम कर रहे हैं। जिस समय हमने कंपनी की स्थापना की उस समय थोड़ा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, लेकिन नेवर गिव अप, जो हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो मानसिकता हमने रखी। दूसरा, हमने शुरू से एक पार्टनर, जो कोलैबोरेशन वाली जो मानसिकता होती है, जो बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ के या जो पहले से मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करके अपना वैल्यू कहाँ हम दिखा सकते हैं, कैसे वो जो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकें और क्वालिटी के साथ कर सकें, वो एक सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हैं कि हम उस मानसिकता को लेकर आगे चले और हमने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, प्रयासों में कभी कमी नहीं की और सही टैलेंट है उसको हमने अवसर दिया। और जैसा मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, तो उस टैलेंट फैक्ट्री को समझना और उसको अपने परिवेश में लेके आना और काम करना, वो एक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए, जो धीरे धीरे आती है, समय पर ही आती है।
1: निश्चित रूप से, और ये जो टैलेंट फैक्ट्री है वो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया होगा कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इस देश से बाहर जाके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, और हम कह सकते हैं कि आप एक वैश्विक बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में आपने स्थापित किया है अपनी मेहनत से। एक हम इसमें ये जानना चाहेंगे, आप अपनी कंपनी के संस्थापक CEO हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए जो ऑफिस होता है प्राय वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है,
0: जी।
1: लेकिन उससे आगे फील्ड पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाए, ग्राउंड टू वर्क काम करे, इसको लेके आप किस तरह की अपनी नीति बनाते हैं या किस तरह की नीति बनानी चाहिए?
0: मेरा जो मुख्य रोल है मेरी कंपनी में वो वही है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर चालू करूं या मैं किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं हमारे क्लाइंट के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो एक एक उसका जो यूजर है, जो उसको प्रयोग में लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, उसके पास क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी गणित वहां से चालू करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को खत्म करना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के प्रभाव कहाँ कहाँ पहुंचा और वो किस रूप में पहुंचा, अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाए तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। हमारे टर्म में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
1: PMO यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस,
0: जी,
1: उसका किस तरह से सक्रिय रोल होना चाहिए और हो रहा है
0: जी।
1: ये आपने बताया। आजकल तकनीक बदल रही है, खास करके हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है।
0: जी
1: भारत सरकार सरकार ने भी इनोवेशन पे ज्यादा फोकस किया है, तकनीक और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किस तरह से एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, हेल्प भी कर रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें

0: उसी समय में एक बात और ध्यान रखना है कि ये उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट पे आ सकता है, वो आपके टैलेंट पे भी आ सकता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई भय तो नहीं है कि भाई नवाचार हो जाएगा या कुछ इनोवेशन हो गया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या हमारा काम कोई और करने लग जाएगा, ये भय निकालना पड़ेगा। बनिस्पत इसके हमारे को क्या करना चाहिए कि हमको वो सीखना चाहिए। अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी रिलीवेंस बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम इनोवेशन और एक्सीलेंस लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहीं से इनोवेशन का प्रादुर्भाव होगा।
1: उद्यमिता को बढ़ाने के लिए या युवाओं को और से और अधिक अवसर मिलने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है भविष्य की और तकनीक क्या आ सकती है इस क्षेत्र में मदद करने के लिए?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक काल चालू हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। 2017 में मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको डेमो किया था कि इसको हम कैसे यूज में लेके आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इसका प्रभाव है या आगे की इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है वो बहुत ही विस्तृत है, इसका स्वरूप बहुत विशाल है, विराट है, और वो पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ रहा है। और जहां टैलेंट है वहां पे ये बहुत त्वरित गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूज करने वाला ज्यादा है, उनको प्रयोग में लाने वाले ज्यादा हैं। तो उस सारी डायनेमिक्स को समझने के लिए या समझते हुए हमें अपने आप को उससे एक्वेंटेड करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना पड़ेगा कि ये एक कोई ऑप्शनल विषय नहीं रह गया है, ये हमारे को छोटी कक्षाओं से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सब में इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो आज चालू हो गया है। अभी मैं IIM में भी पढ़ा के आया ये बात, और सारी जो इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरीके के कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए हैं।
1: आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरुआती दौर के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है, आपको क्या लगता है कि असफलता को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है? उस असफलता के कारण क्या है? क्या आर्थिक कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, या व्यक्ति जिसने शुरू किया है संस्था ने उसमें विल की कमी हो जाती है?
0: जब मैंने अपना करियर चालू किया था तब से ही एक बात सीखी थी, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ और उसको अपने जीवन में उतारा भी है। वो ये है, इंग्लिश में उसका कोटेशन है कि यू डोंट वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू वांट टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। नए नए तरीके के कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती, हमें उसी कार्य को नए तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर किसी को सफलता नहीं मिली है तो धैर्य की परम आवश्यकता रहती है, और जो हम काम नहीं मिल रहे हैं उस असफलता के पीछे कारण क्या है अगर उनको हम जान पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको हम असफलता को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और उसके लिए एक प्रमुख, और जो अभी गुरु पूर्णिमा थी 2 दिवस पहले, तो विश्व में उसकी बहुत महत्ता है, मेरे जीवन में प्रमुख रूप से मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और वो गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, आपके लिए मेंटर कोई भी हो सकता है, और मेंटर होना अच्छी बात है, और अलग अलग क्षेत्रों में आपके एक साथ 10 मेंटर भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाके बात करो। तो मेंटरशिप मिलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे, तो असफलता को सफलता में लाया जा सकता है।
1: किसी संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियों के सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस की जिसको हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है नवाचार के साथ कंपनियों के विस्तार के लिए गुड गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपने जहाँ ये एस्टेब्लिश किया है उसका अनुभव कैसा है?
0: बिना गवर्नेंस के कोई भी आप प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या इनिशिएटिव आप चलाते हैं वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और अगर हम उस गवर्नेंस को सही तरीके से उस इकोसिस्टम में फॉलो कर पाएं तो उसकी सफलता सिद्ध होती है। तो नीतियां होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और वो अपने एक अनुशासन लेके आता है, वही चीजें हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है, और वो प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो नीति का होना, पॉलिसीज का होना, गवर्नेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, स्टैंडर्ड्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने शरीर में विटामिन का होना आवश्यक है।
1: आप टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और बिजनेस में भी विशेषज्ञ हैं, 2019 में बताया कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है, आपने किताब लिखी है PMO रिवाइड, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को किस तरह से आप नए सिरे से एक विस्तार दे सकते हैं या आपस में जोड़ के रख सकते हैं
0: जी।
1: ये इसका शाब्दिक अर्थ है
0: जी।
1: इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी मूल भावना क्या है, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली लिखने की?
0: तो अगर मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो हम किस तरीके से सोचते थे कि उसका जो नींव रखी जाएगी उसके ऊपर कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, वो सारी चीजें। अब आज के परिवेश में

0: अगर आप टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मिक्स करके देखते हैं तो हमारे को कई तरीके की संभावनाएं नज़र आती है कि मैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी जगह में इस तरीके से भी बना सकता हूँ या अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो रिवायर अपन जो सोच रहे हैं, वो सिमिलरली वो अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में। पहले ऐसे होता था कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर एक पीएमओ डिपार्टमेंट में हैं, वो अपना अपना काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन उसी पीएमओ ऑफिस को अगर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो लिगेसी सिस्टम है उसके ऊपर हम एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे को उसको रीवायर करना पड़ेगा। और वो रीवायर करने के लिए ही मैंने ये पीएमओ रीवायर्ड किताब लिखी है, जिसमें मैंने दुनिया के 28 विशेषज्ञों को शामिल किया है। उनके जो पर्सपेक्टिव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें अंदर डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से प्राप्त हुई है।
1: बहुत अच्छा, आपने पीएमओ रिवायर्ड की चर्चा की कि किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट के ऑफिस को रिवायर्ड किया जा सकता है। नागेंद्र राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने उद्यमिता, विकास, जो वर्तमान की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और जो इनोवेशन है, वो किस तरह से इस क्षेत्र में कंपनियों के विस्तार में, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, अभी आप इस विषय पर नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ आज का उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात
5: इंजो दहलीज दुरूद व सलाम बार शेरवंदगान अजीज बरनामा सुबह ये माँ दर सात नौ वासी रह गई हिन बराबर बा सात हफ्तोती रह गई ये तेहरान इला सात यादिन बराबर बा सात नौ तेहरान पक्ष्मी शवद इनक बख्श फारसी बरून मर्दी आकाशवाणी बरनामा सुबह ये खुदरा दर मौज कूता दर रदीफा ये पाँच हजार यकसद सी किलो हर पक्ष्मी कुनत बरनामा ये सुबह इमरोदमा इबारतस आजिया का हंगे हिंदी अखबार हिंदो जहान तराना फारसी तफसीर रूस गुफ्तार इमरूज बरनामा ये स्पॉटलाइट तराना फिल्मी बरनामा रूहानी अखबार जहान मोतराखिर खुलासा ये अखबार इंजा दहलीज शिरंदगा नजीर बरनामा सुबह गाहिरा व यह कहांगे हिंदी शुरू में कि नहीं।

एक हम समात फरमाए। मतलार्थ करता हूँ कि बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसने जात की,

बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुस्न ज़ात की, मेरी नज़र की राह में गर्द है मुमकिनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुस्न ज़ात की, मेरी नज़र की राह में गर्द है मुमकिनात की। शिरर्दे के आखिरकार जज्ब दिल अर्शे बरी तक आ गया, आखिरकार जज्ब दिल अर्शे बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें क़ुरब तजल्लियात की। आखिरकार जज्ब दिल अर्शे बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें क़ुरब तजल्लियात की। शिरर्द करता हूँ कि अक्लो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, अक्लो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। अक्लो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। शेर समात करें कि धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। फिर समात कीजिए शेर के, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। अर्ज करता हूँ कि तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। फिर समात कीजिए शेर के, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। शेर अर्ज किया है कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नज़र उठी बज्म सजी हयात की। फिर शेर

জেতিপাল যাব সফায় জেতিপাল আরে ও মহলে নবাব।

घर से बदली पहुंची खाके डर जाना था घर से बदली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। रोचक जानकारी, बातों और गीतों के साथ आज के सफर को तय करेंगे आप हमारे साथ। तो आप सभी को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और हमारे यूट्यूब हैंडलर AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी सुन सकते हैं आप। साथियों, सफर में आगे बढ़ने से पहले आज आपको बता दूं, आज का सवाल हमारी एक आदत से जो है जुड़ा हुआ। जैसे हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातों में किसी एक शब्द को आदतन बोला करते होंगे, यानी वे शब्द या वाक्यांश जिसे अपनी बातचीत के दौरान अक्सर बार बार दोहराते होंगे, तो उनका कोई ना कोई ऐसा तकिया कलाम जरूर होगा। अपनी हर बात में किसी शब्द या वाक्य को दोहराने की आदत ही व्यक्ति की पहचान और उसका तकिया कलाम बन जाता है। जैसे अरे भाई, अरे यार वगैरह वगैरह जो हम अक्सर बोल चाल में बोलते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग अपनी बातों में करते हैं बार बार, तो आपको बताना है आज आपका तकिया कलाम क्या है। ध्यान से सोचिए और बतलाइए रोचक किस्से आपके तकिया कलाम से जुड़े हुए कौन से हैं, और लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पे। और अब आज का सुविचार, सतत और निरंतर रहना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हमारे लोगों ने भी कहा है, विद्वानों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। निरंतर प्रयास से जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति समझ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए असफल होने से बचने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे।

साथियों, आपके आने से बहार आ ही गई है। और ये जो गीत आप सुन रहे थे, झुक गया आसमान फिल्म से था, मोहम्मद रफी की आवाज में आपने इस गीत को सुना। और आज सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पद्म पंडित किशन महाराज जी की जयंती है। तबला वादन में विशेष पारंगत और कथक नृत्य के साथ उनके जुगलबंदी और भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा और उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही लेखिका और उपन्यासकार चंद्रकांता जी की भी आज जयंती है। श्रीनगर में जन्मी इस साहित्यकारा ने हिंदी साहित्य और कश्मीरी संस्कृत और लोक जीवन को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। उन्हें उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं। और आज का दिन हमें याद दिला रहा है 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले, सिने जगत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले महानायक उत्तम कुमार की जयंती का। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। वो बतौर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक के रूप में पहचाने गए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको याद दिला दूं, आज का हमारा प्रश्न है जो जुड़ा हुआ है आपकी एक आदत से, और वो कहलाती है आपकी आदत। जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं वो कहलाता है आपका तकिया कलाम। यदि आपका ऐसा कोई तकिया कलाम है तो हमें लिख भेजिए fmgolgia@gmail.com पर।

दूरियां, इस फिल्म से आपने भूपेंद्र सिंह और अनुराधा की आवाज में सुना इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हमारे जो बड़े हैं वो हमें अक्सर ये बताते हैं कि अच्छी बातें और अच्छे संस्कार जहां से भी मिले उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बात अनुभव से सीखी जाए ये संभव नहीं, बल्कि दूसरों के बताए अनुभव से हम सीख सकते हैं। और जानते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है हमारा साहित्य, हमारे महापुरुषों की जीवनियां और उनकी आत्मकथाएं, यानी ऑटोबायोग्राफी। हमारे मार्गदर्शक हमारे महापुरुषों की जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ने की बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई है। हाल ही में मन की बात के एक एपिसोड में उन्होंने युवाओं और देश के नागरिकों से सफल लोगों के जीवन से सीख लेने, उनकी आत्मकथाएं पढ़ने और जीवन में शॉर्टकट से बचने की सलाह दी है। और चूंकि आत्मकथाएं हमें दूसरों के अनुभव और गलतियों और उनकी सफलताओं से बिना किसी नुकसान के सीखने का मौका देती हैं, इसलिए जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तब सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि उस व्यक्ति के संघर्षों और उसकी सीखों को अल्फाजों के साथ आत्मसात कर रहे होते हैं, है ना। तो आत्मकथाओं से यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको मैं बता सकती हूँ कुछ आत्मकथाएं जिन्हें मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिनमें परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत, महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा अग्नि की उड़ान, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, और श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्म कहानी। ऐसी आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं आप और गुन सकते हैं अपने सपनों को यथार्थ के धरातल पर।

साथियों, सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप सुन रहे थे जानवर फिल्म से ये गीत। और देखिए, बहुत सारे संदेश हमारे साथियों के हमारे पास आ चुके हैं जो हमारे साथ नियमित जुड़ते हैं, और उन्होंने अपना उत्तर भेजा हुआ है जो हमारे आज के प्रश्न का है। और जो श्रोता साथी जिन्होंने अभी रेडियो ट्यून किया है उन्हें बता दूं, आज का हमारा प्रश्न है, आपको बताना है आपका तकिया कलाम क्या है। अगर ऐसा कोई शब्द जिसे आप बार बार अपनी बातचीत में दोहराते हैं तो ऐसा कोई शब्द है तो लिख भेजिए आप हमें fmgoldga@gmail.com पर। हमारे पास ये पहला संदेश है नवीन भाटिया जी का, और उन्होंने लिखा है वो शब्द जिसका प्रयोग वो बार बार करते हैं वो है राम भला करे। बहुत सुंदर बात है, और इसी बहाने आप राम जी को याद भी कर लेते हैं। अगला संदेश है, हमारे श्रोता साथी हैं चरणदास जी, और इनके साथ राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी जी हैं। ये हिसार से लिख रहे हैं कि फिल्मों में और उपन्यासों में तकिया कलाम अच्छे लगते हैं, वैसे सामने बैठकर बातें करना है तो तकिया कलाम का प्रयोग करना अजीब लगता है। हाँ, ये बात भी हो सकती है, आपने भी ठीक कहा। और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने अपना संदेश भेजा है कि वो बार बार एक वाक्य का प्रयोग करते हैं और वो है उनका तकिया कलाम, कहने का मतलब ये है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग अक्सर अपनी बातों में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साथियों, अब आपको मैं बताती हूँ एक खूबसूरत सी जानकारी जो है आपके पर्यटन से जुड़ी हुई। सुंदरता को चार चांद लगाने वाले घूमने वाली जगहों में से एक है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का धुड़मारस गाँव, जिसे अपने पर्यटन की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क की गोद में बसा है गांव धुड़मारस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है। अगर आप यहाँ आते हैं ना तो पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर नजारा आपको अपनी तरफ खींच लेगा, और गाँव के अंदर पक्की सड़कें नहीं मिलेंगी पर तहे दिल से स्वागत करते हुए धुरवा जनजाति के सीधे साधे लोग आपको जरूर यहाँ मिल जाएंगे। जैव विविधता, पारिस्थितिकी पर्यटन, बंबू राफ्टिंग, कयाकिंग, जंगल ट्रैकिंग और स्थानीय धुरवा जनजाति

की पारंपरिक जीवन शैली और उनकी संस्कृति और खान पान को आप करीब से यहाँ पर देख पाएंगे जब आएंगे। और जानते हैं ये जो धुरवा जनजाति है, इनका मुख्य पेशा जो है वो खेती है और वनोपज है। इसके अलावा बांस की लकड़ियों से हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में ये निपुण हैं। बांस और मिट्टी से बने होम स्टे यहाँ पारंपरिक एहसास कराते हैं। और जानते हैं सौर ऊर्जा से जगमगाता है ये गांव सतत पर्यटन का मॉडल बनकर। और प्रकृति और पर्यावरण के करीब रहने वाले जो धुरवा जाति के लोग हैं वो यहाँ पानी की पूजा करते हैं और जल को अपनी माता मानते हैं। और बस्तर में कई धुरवा परिवार पानी को साक्षी मानकर ना विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। और अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो तीरथगढ़ का सीढ़ी नुमा बनावट वाला 300 फीट गहरा जलप्रपात, कोटमसर गुफाएं और कैलाश गुफाएं आप देखने को पाएंगे जो खूबसूरत चूना पत्थर की संरचनाओं से बनी हैं। और जानते हैं इन गुफाओं में जो मछलियाँ हैं वो अंधी होती हैं, मतलब वो दृष्टि से देख नहीं पाती हैं ऐसा कहा जाता है। और कैलाश गुफा में जो आवाज़ गूंजती है वो एक प्राकृतिक संगीत की तरह लगती है। तो आप यहां आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन पास का जो है वो जगदलपुर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। यहां आने पर प्रकृति की जो सादगी है वो बरबस ही आपको अपना बना लेगी।

लता मंगेशकर की आवाज में आखिरी खत फिल्म से आप सुन रहे थे इस गीत को। साथियों, हमारे श्रोता साथी जो बहुत जागरूक हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं और उन्होंने अपने संदेश में आज के प्रश्न का उत्तर लिख भेजा है, जिसमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि हमारी और एक बार से जो बार बार बात बोली जाने वाली होती है वो बात है, वो शब्द है हमारा तकिया कलाम, थैंक यू। कितनी अच्छी बात आपने कही, थैंक यू कहना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे अगले जो श्रोता साथी हैं उनका संदेश है गौरी शंकर वर्मा जी का। उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल अच्छा लगा है और एक सवाल को मैं दो बार कह देता हूँ और बात अगर कह देता हूँ तो अच्छा, यानी कि ये शब्द मैं बार बार दोहराता हूँ, यानी कि उनकी जो ये आदत है यही उनका तकिया कलाम है और ये आदत उनकी छूटती नहीं है। तो उन्होंने कहा है एक बात कहूँगा, जैसे हम कोई बात सही तरीके से ना लिख पाएं या अपना आपका कमाल है उसे आप सही तरीके से पढ़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि हमें सचमुच में लगता है कि हम सभी को ना गौर करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसी आदतों के साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको याद दिला दूं, आपको बताना है आज का प्रश्न आपका तकिया कलाम क्या है, जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत में। और जागरूकता के क्रम में आज मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको सच में अच्छा लगेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है कचरा कैफे। एक बेहद ही अनोखा वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल का ये कचरा कैफे है जहां कचरा करेंसी के रूप में तब्दील किया जाता है। यहां पुराने कपड़े से लेकर अखबार, किताबें, प्लास्टिक, ई वेस्ट, यहां तक कि खराब एसी, मोबाइल फोन भी जमा होते हैं, जिसके बदले मिलने वाली रकम सीधे व्यक्ति के कचरा कैफे अकाउंट में जुड़ जाती है। लोग अपने घरों का अलग किया हुआ प्लास्टिक, सूखा कचरा कैफे के कलेक्शन सेंटर पर लाते हैं और कचरे के वजन और उसकी कीमत के हिसाब से यूजर को कचरा कैफे ऐप पर डिजिटल कॉइन्स या फूड कूपन मिलते हैं, जिनका उपयोग करके लोग कैफे में स्वादिष्ट खाना खाते हैं या स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले और जैविक खाद जो यहां मिलते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह ये कैफे महिला स्वयं सहायता समूहों को भी रोजगार दे रहा है। और जानते हैं इन कचरा कैफों में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए बर्तन बैंक की सुविधा भी है, जहां लोग अपने जो त्यौहार होते हैं या अपने यहां कोई फंक्शन होता है उसके लिए निःशुल्क बर्तन भी ले हैं। तो देखा कितना कमाल का आइडिया है कचरा कैफे। इस तरह की मुहिम चलाकर हम कचरे का निस्तारण और उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं।

बंटवारा। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मन्ना डे, बलबीर और साथियों की आवाज में इस गीत को। और साथियों, आज एक प्रेरक कहानी है आपके लिए, उनकी जिन्होंने इतिहास बदल दिया, क्योंकि 1 सितंबर 2026 के दिन भारतीय वायुसेना में पहली बार नॉन मेडिकल ब्रांच से, यानी कि गैर मेडिकल ब्रांच से कोई महिला 2-स्टार रैंक तक पहुंची है। शक्ति शर्मा नाम है उनका। एजुकेशन ब्रांच में कमीशन और 32 साल का गौरवशाली सफर। वो पहली महिला जिन्होंने सैनिक स्कूल को लीड किया, आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में आईएएफ चेयर्स स्थापित करने वाली विजनरी लीडर बनी और पहली महिला एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा बनी। उनसे पहले मेडिकल क्षेत्र के अलावा कोई महिला एयर वाइस मार्शल नहीं रही। देश के युवाओं को रक्षा अनुसंधान से जोड़ने के लिए आईआईटीज में नई पहल करने वाली शक्ति शर्मा, एनडीए और एएफसीएटी का सपना देखने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

साथियों, पैगाम फिल्म से आप इस गीत को सुन रहे थे आशा भोसले, सुमल कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में। और देखिए, अब आपको हम बताने वाले हैं महानगरीय संस्कृति में जो एकल परिवार की श्रृंखला बढ़ रही है उसके बारे में और उसकी चुनौतियों के बारे में। और जानते हैं, ये जो बात है इससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं और इसका एक लाजवाब उदाहरण बन रहा है इंदौर के 6 दोस्तों का परिवार, जिसे जिन्होंने मिलकर बसाया है गोल्डन होम्स के नाम से अपने आशियाने को। 6 दोस्तों और उनके परिवारों की यह अनूठी कहानी समाज में एकाकीपन को दूर करने की प्रेरणा बन रही है। इन दोस्तों और उनके परिजनों ने बुढ़ापे के अकेलेपन को मात देने के लिए ना सामूहिक जीवन को अपनाया है। और जानते हैं, एक ही छत के नीचे रहने वाला ये परिवार जो है वो बहुत अनोखा है। यहाँ रसोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ पकाते हैं और एक साथ खाते हैं, मिलकर काम करते हैं। और जो परिवार की महिलाएं हैं, इस वजह से उन्हें रसोई के जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं उनसे काफ़ी हद तक आज़ादी मिल जाती है और वो अपना पूरा समय अपनी सेहत की देखभाल में और अपनी खुशियों को गंवाने की बजाय अपनी खुशियों को समेटने में पूरा समय देती हैं। बांटने से खुशियां दोगुनी और दुख आधे हो जाते हैं, है ना। और इस सूत्र पर चलने वाला ये परिवार रिटायरमेंट होम नहीं है, बल्कि कर्मठ कर्म योगियों का घर है, जहां सभी अपने अपने करियर में एक्टिव हैं। मैं से हम का सफर तय करता ये परिवार त्योहार से लेकर बच्चों की शादियों तक हर बड़े फैसले में आपस में राय लेता है, मशवरा करता है और मिलजुल कर तय करता है जीवन की दिशा को। इनके इस परिवार नुमा दोस्ती के ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। और अगर कहें ना तो दोस्ती गहरी हो तो खून के रिश्ते के बगैर भी हम एक संयुक्त सुखी परिवार के साथ जीवन को गुजार सकते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है।

साथियों, जीवन की डोर से आप सब हमारे साथ बंधे हुए हैं और इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म थी हमारी, हमारी फिल्म का नाम था जीवन की डोर से बांध लिया है, और ये फिल्म थी असली नकली, और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, देखिए, त्यौहार आने वाला है, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, और इस पर्व के अवसर में भोग प्रसाद और पकवान ना बने तो जन्माष्टमी कभी पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है ना भाई। कान्हा के भक्तों ने कुछ ना कुछ तो तैयारियाँ शुरू कर ही दी होंगी, और हमें लगता है हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी ऐसे होंगे जिन्होंने कान्हा की भक्ति में अपने घर परिवार में इस त्यौहार की तैयारियों के लिए अपनी शुरुआत कर दी होगी। तो आज कान्हा के भोग के लिए झटपट बनने वाला वृंदावन का जो मेवा पाक है उसकी विधि जान लेते हैं, ठीक है। तो सामग्री आपको इसके लिए जो चाहिए होगी दोस्तों, वो चाहिए होगी 1 कप मखाना, 1/2 कप काजू, बादाम, पिस्ता जिसे आपको बारीक काट लेना है, और 2 चम्मच आपको घी लेना है, कढ़ाई में डालना है, और 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क या बूरा चीनी जो उसके साथ होता है वो उसके साथ मिलाना है, और इसे सबको तैयार करना है। सामग्री को इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले घी में आपको ना ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मखाना है उसको भुनना होगा, उसे थोड़ा सा कुरकुरा करना होगा और दरदरा पीस कर अलग रखना होगा, और उसके बाद जो घी बचा होगा उसमें सारे मेवों को एक साथ आपको रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लेना है, और कढ़ाई में जो कंडेंस्ड मिल्क है उसे गर्म करके उसमें मिल्क पाउडर मिलाना है, फिर जो आपने ड्राई फ्रूट्स में मखाना दरदरा किया है उसे मिलाना है, और उसके साथ ही सारे मेवों को एक साथ मिला देना है और चलाते रहना है उस मिश्रण को तब तक जब तक कि वो मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। और फिर एक थाली में आपको घी लगाना है, घी को पूरा फैला देना है उस मिश्रण को फैलाने के लिए, ताकि वो जो थाली की चिकनाई है वो चिकनाई उस मिश्रण के साथ चिपके ना, और उस मिश्रण को पूरी थाली में आपको फैलाकर उसे ठंडा होने तक छोड़ना है, लेकिन उसके ऊपर आपको डालना है केसर और पिस्ता सजाने के लिए, और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर इसे बर्फी के आकार में छोटे छोटे पीस में आप काट सकते हैं, या अपनी पसंद के अनुसार आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, और इस तरह आपकी जो है वो भोग की थाली तैयार हो जाएगी, और आप अपने कृष्ण के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनके स्वागत के लिए इस प्रसाद के साथ। तो चलिए हम कृष्ण को भी याद करते हैं और इस गीत सुनते हैं उनसे जुड़ा हुआ आज के दिन।

0: तेरे मेरे सपने, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, मुरली की तान पर जो सबको नचाए वो सांवला सलोना कृष्ण ही कहलाए। आप सबको तैयारी करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की, और इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर

0: की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे उस फिल्म का नाम है नरसिम्हा। जी हाँ, नरसिम्हा वर्ष 1991 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन, निर्माण, लेखन और संपादन एन चंद्रा ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, डिंपल कपाड़िया और ओम पुरी मुख्य भूमिकाओं में हैं और उर्मिला मातोंडकर, रवि बहल और शफी इनामदार ने सहायक भूमिका निभाई है। श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, फिलहाल आइए सुनते हैं फिल्म का ये पहला गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं. इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे. बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 18 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक उस वर्ष का 10वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था. इस फिल्म में सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी जबरदस्त साबित हुई, जिसकी वजह से उन्होंने खूब सराहना मिली. पर ओम पुरी जी की बात ही कुछ अलग थी. खलनायक की भूमिका निभाते हुए ओम पुरी जी ने बुराई को एक अविस्मरणीय चेहरा दिया. मतलब एक्टिंग ऐसी कि किसी को भी देखकर विलन पर गुस्सा आ जाए. श्रोताओं, यही तो होती है असली एक्टिंग, जो किसी भी रोल में रम जाए. और इसी वजह से 37वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए ओम पुरी जी ने ये अवार्ड भी जीता.

श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म की कहानी एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय युवक नरसिम्हा यानी सनी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका परिवार एक सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है। इस हादसे के बाद वो टूट जाता है और शराब व अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। वो शहर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट जमींदार बाबजी यानी ओमपुरी का सबसे खास यानी राइट हैंड बन जाता है। परिवार को खोने के बाद उसमें इंसानियत और इमोशंस नहीं बचती और वो बुराई की दुनिया में कदम रख देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब नरसिम्हा की मुलाकात अनीता यानी

डिंपल कपाड़िया से होती है और उनकी उसकी सोई हुई इंसानियत वापस जाग उठती है, खास करके तब जब बाप जी अपनी बेटी मीनू और उसके प्यार रवि जो अनीता का भाई है उसे मारने का ऑर्डर देता है। जब नरसिम्हा को पता चलता है कि उसके परिवार को मारने वाले दंगे के पीछे खुद बापजी का ही हाथ था, तो वो बापजी के खिलाफ बगावत करता है और बदला लेता है। अंत में मीनू और रवि एक हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरसिम्हा और अनीता भी एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म नरसिम्हा में बाप जी की बेटी मीनू के किरदार के लिए पहले आयशा झुलका को चुना गया था, जो उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह राजेश्वरी सचदेव को लिया गया। ये फिल्म राजेश्वरी की भी पहली फिल्म होने वाली थी। उन्होंने कुछ दिनों तक शूटिंग की, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से उनकी जगह उर्मिला को ले लिया गया। श्रोताओं, ये दूसरी बार था जब उर्मिला ने सनी देओल के साथ काम किया था। इससे पहले उन्होंने 1987 में रिलीज हुई फिल्म डकैत में उनके साथ काम किया था।

श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा से प्रेरित होकर इस सीन को बेहद भव्य बनाया गया था। बाप जी जब नरसिम्हा को एक खंभे में चुनवा देता है, तब सनी देओल उस भारी खंभे को चीरते हुए गुस्से में बाहर निकलते हैं और बाप जी के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और फिल्म का अंत हो जाता है जहां अच्छाई की जीत होती है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अपने बेल्जियम दे हमरुतबा बार टीवी पर नाल नवी दिल्ली विच दोहली गलबात, कई समझौतियां दे दस्तखत। भारत

0: जीव रखे सहयोग गलबात उच्च पदरी दौरिया सिखलाई समर्था निर्माण राही दबले संबंधा बधाण से सहमत हुए। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क विच निवेशकों सामने भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की थी। फ्रांस अते भारत ने टैक्सटाइल अते फैशन खेत्र विच सहयोग को मजबूत करने लई पैरिस विच समझौतिया दे दस्तखत कीते ते बैडमिंटन विच भारत दे किदांबी श्रीकांत चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट दे मर्दां दे सिंगल्स दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गए ने। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ते बेल्जियम ने अज कई समझौतियां दा वटांदरा कीता जिस विच रक्षा सहयोग ते इरादा पत्तर अते नवियावणयोग ऊर्जा साइबर अपराध अते कूटनीतिक सिखलाई दे खेतरां विच समझौते शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दुपहरे नवी दिल्ली विच अपने बेल्जियम दे हमरुतबा बार्ट डी वेवर नाल दवल्ली गलबात कीती। दोवां नेतावां ने दवल्ले संबंधां दे समुच्चे दायरे दे नाल नाल आपसी हित दे खेतरी अते आलमी मुद्दयां ते चर्चा कीती। पहला सवेरे बेल्जियम दे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि देण लई राजघाट गए। बेल्जियम दे प्रधानमंत्री भारत दे तीन दिना दौरे ते कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर दे नाल बेल्जियम दे रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी ने। पिछले साल फरवरी विच अहुदा संभालण तों बाद इह उहनां दी भारत दी पहली यात्रा है। उह भारत यूरपी यूनियन मुक्त व्यापार समझौते दे संदर्भ विच भारतीय समिति संघ दे व्यापारक समागम विच मुख भाषण वी देणगे। साडे पत्रकार मुताबिक यह दौरा भारत बेल्जियम भाईवाली नूं होर मजबूत करन अते व्यापार ते निवेश रक्षा ते सुरक्षा ते नवियावणयोग ऊर्जा वर्गे आपसी हित दे खेतरां विच सहयोग नूं अगे वधाउण दा मौका प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज कहा कि भारत अते बेल्जियम आपसी सत्कार लोकतंत्री कदरां कीमतां अते नियम आधारित विश्व व्यवस्था प्रति सांझी वचनबद्धता ते आधारित निघे अते लंबे समें तों चल रहे संबंध सांझे करदे ने। मंत्री ने कल नवी दिल्ली विच बेल्जियम दे रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन नाल आपणी वफद पत्री गलबात दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि दुनिया वड्डी भू सियासी अते आर्थिक उथल पुथल दा समां देख रही है ते चुनौतियां नाल नजिठण दी जरूरत ते जोर दित्ता। उन्होंने कहा कि अजिहियां स्थितियां विच बेल्जियम वर्गे दोस्त अते अहम भाईवाल नूं मिलना विचारां ते दृष्टिकोणां दा वटांदरा करन दा इक लाभदायक मौका प्रदान करदा है।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।
0: बेल्जियम दे रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत बेल्जियम दोस्ती नूं अगे वधाउण ते जोर दित्ता।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: मीटिंग दौरान दोवें मंत्री रक्षा सहयोग गलबात उच्च पदरी दौरिया सिखलाई ते समर्था निर्माण राही दवल्ले संबंधां नूं वधाउण ते सहमत होए। दोवां नेतावां ने खेतरी शांति ते सुरक्षा दे मुद्दयां ते वी चर्चा कीती अते हिंद प्रशांत विच समुद्री सुरक्षा सहयोग दी जरूरत नूं स्वीकार कीता। उन्हां दोहराया कि भारत अते बेल्जियम विचकार पई वाली आपसी विश्वास अते सत्कार ते सांझे कदरां कीमतां ते आधारित है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क विच एक उच्च पदरी व्यापारक कॉन्फ्रेंस विच निवेशकों सामने भारत दे सुधार आधारित विकास ते चर्चा कीती। उन्होंने 2026-27 दी पहली तिमाही विच देश दे 7.8% आर्थिक विकास अते सुधर रहे निवेश माहौल नूं उजागर कीता। खजाना मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि बैंक आफ अमेरिका दे सहयोग नाल भारतीय व्यापारक कौंसल खाने ने कॉन्फ्रेंस कराई। इस मौके ते बोलदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि आलमी रुकावटां ते चुनौतियां दे बावजूद भारत दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख आर्थिकता बनिया होया है। ਉਹਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਵਧਾਈਏ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ

0: में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके सबब नए इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। कुदरती आफा से निमटने के महकमे ने गंगा की आबी सतह बढ़ने के तनाजुर में अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इस नदी की आबी सतह पटना के गांधी घाट पर आज रात सैलाब की सतह को पार करने के इम्कानात हैं और मोकामा के हतीडा में कल दोपहर ये सैलाब के खतरे की सतह को पार कर जाएगा। झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता कुछ रोज से शदीद बारिश के पेश नज़र बदस्तूर सैलाब और पानी भरने जैसी सूरत हाल जारी है। ताहम बारिश में कमी आने के बाद कुछ दरियाओं में सतह आब में भी कमी आई है, लेकिन इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रांची में गीतल सुद बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। सुवर्णरेखा दरिया के तेज बहाव के सबब लोगों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। इंतजामिया दरियाओं से मुत्तसिल इलाकों और नशीबी इलाकों में मुसलसल करीबी नजर रखे हुए है। इस दौरान रामगढ़ के मगनपुर गांव के गोला ब्लॉक में मुख्तलिफ मकानात गरकाब हो गए, लेकिन आज सुबह से बारिश न होने की वजह से पानी की सतह में कमी आ रही है। इंतजामिया ने दरियाओं के आसपास और नशीबी इलाकों में रह रहे लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और किसी हंगामी सूरत हाल में सरकारी हिदायत पर अमल करने को कहा है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने आज जोर देकर कहा कि भारत इख्तराब मेयार और कीमतों की बुनियाद पर ऑटोमोबाइल सनत में आलमी नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की सोसाइटी SIAM की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि यह शोभा, जिसकी मौजूदा कदर 22,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मुल्क की GST में तकरीबन 15% का तआवुन देता है और तकरीबन 4 करोड़ बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने में मदद देता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2025-26 के दौरान भारत की ऑटोमोबाइल बरामदात में 24% का इजाफा हुआ। मरकजी वजीर ने इस बात पर एतमाद का इजहार भी किया कि भारत की इक्तिसादी तरक्की में सनत का तआवुन जारी रहेगा। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली च्यूक यी से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन वो जापान की टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गईं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमबनसब बार डे वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सिफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रेंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का अज़्म किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई कि आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में शेंजेन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Belgium agree to double bilateral trade in the next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Agreement signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart Theo Franken commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises increasing flood threat in New

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बना रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च

0: केंद्रीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा

0: प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
2: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग सुनना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पहचान ही एक दूसरे के साथ जुड़कर बनी होती है। और वो जुड़ी है संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। लेकिन आज हम इस मशहूर जोड़ी की बात थोड़ी अलग तरह से करेंगे। आज हमारी कहानी का केंद्र है प्यारेलाल शर्मा के। प्यारेलाल जिनके हाथ में वायलिन था, जिनकी उंगलियों में सुर थे और जिनके सामने बैठा पूरा ऑर्केस्ट्रा मानो उनकी धुन पर सांस लेता था।

1963 में आई फिल्म पारस मणि से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनानी शुरू की। फिल्म के गीत वो जब याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन इस सफलता के पीछे केवल धुन बनाने की कला नहीं थी, इसके पीछे था वर्षों का अभ्यास, संगीत की गहरी समझ और ऑर्केस्ट्रेशन पर अद्भुत पकड़। प्यारे लाल शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ। उनके पिता

पंडित राम प्रसाद शर्मा स्वयं प्रसिद्ध संगीतकार और ट्रम्प वादक थे। पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने। कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया था और घंटों अभ्यास किया करते थे।

का अभ्यास करता है उसे शायद अभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले वर्षों में उसी वाद्य यंत्र की साधना उसे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे बड़े नामों में शामिल कर देगी। जानते हैं आप, उन्होंने वायलिन की शिक्षा महान संगीतज्ञ एंथनी गोंजाल्विस से प्राप्त की थी और उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी फिल्म में अपने गुरु एंथनी के नाम से गीत बनाकर उनको समर्पित किया। इसी कारण वे ऑर्केस्ट्रा पर भी अपनी पकड़ बना सके।

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं प्यारे लाल, और आज मैं आपके साथ हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, प्यारे लाल की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। कम उम्र में ही उन्हें वायलिन बजाकर परिवार की मदद करनी पड़ी। स्टूडियो से ही उन्हें फिल्म संगीत की वास्तविक दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला। वाद्य यंत्र, रिकॉर्डिंग, गायक, संगीतकार और ऑर्केस्ट्रा, इन सब के बीच उनका अनुभव लगातार बढ़ता गया। इसी बीच उनके जीवन में लक्ष्मीकांत आए। दोनों की उम्र लगभग आसपास थी। दोनों ने संघर्ष देखा था और दोनों में ही संगीत के लिए जुनून था। दोस्ती हुई, संगीत का रिश्ता बना और आगे चलकर यही दोस्ती भारतीय फिल्म संगीत की यादगार जोड़ियों में बदल गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, करीब 4 दशक तक ये जोड़ी फिल्म संगीत पर छाई रही। दोस्ती, मिलन, दो रास्ते, बॉबी कर्ज, प्रेम रोग, हीरो, रोटी कपड़ा और मकान, तेजाब, रामलखन, खलनायक जैसी फिल्मों के संगीत ने अलग अलग पीढ़ियों के श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही रही कि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। प्यारे लाल ने एक इंटरव्यू में अपने और लक्ष्मीकांत के रिश्ते को याद करते हुए कहा था कि दोनों की पहचान एक दूसरे के बिना अधूरी है। यही साझेदारी उनकी सफलता का बड़ा राज थी। लक्ष्मीकांत की धुन, प्यारे लाल ऑर्केस्ट्रेशन और दोनों मिलकर एक ऐसा संगीत रचते थे कि जिसे आज भी सुनते ही पुराने दिनों की खुशबू आने लगती है। प्यारे लाल जी ने एक बातचीत में कहा भी था कि संगीत को अच्छा या बुरा कहने के बजाय ये समझना चाहिए कि अलग अलग समय में संगीत की शैली बदलती है। उनके लिए संगीत खूबसूरत था, जैसे रिश्ते खूबसूरत होते हैं। कितनी खूबसूरत सोच है ना।

प्यारे लाल जी को भारतीय फिल्म संगीत में उनके लंबे और महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में लक्ष्मीकांत के निधन के बाद प्यारे लाल ने सक्रिय रूप में बहुत कम फिल्म संगीत किया, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। फिल्म ओम शांति ओम के गीत धूम ताना धूम के ऑर्केस्ट्रेशन में भी उनका योगदान रहा। उम्र बड़ी, समय बदला, संगीत की तकनीक बदली, लेकिन प्यारे लाल के हाथों में संगीत की कमान बनी रही। प्यारे लाल के परिवार आज भी चकाचौंध से दूर सादगी भरा जीवन जीता है।

दोस्तों, आज की संगीतमय मुलाकात में हमने जाना उस कलाकार को जिसने सिर्फ धुनों को सजाया नहीं बल्कि धुनों के पीछे एक पूरा संसार खड़ा किया, जिसके हाथ में वायलिन था, जिसके सामने ऑर्केस्ट्रा था और था एक ऐसा दोस्त जिसका नाम था लक्ष्मीकांत। दो नाम एक पहचान, कहते हैं संगीत खत्म नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता रहता है। प्यारे लाल के सुर आज भी हमारे साथ हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मैटनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। मैटनी मेलोडीज में मैं अर्चना गोयल आपके साथ। दोस्तों, वो दौर जहां वक्त की सुइयां हमें लाती हैं, उस दौर में जब फिल्मों के गीत सिर्फ गीत नहीं हुआ करते थे बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाया करते थे। 60 का दशक हिंदी सिनेमा के संगीत का ऐसा सुनहरा दौर जिसमें शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, मदन मोहन, रोशन रवि, ओपी नैयर जैसे संगीतकारों ने ऐसी धुनें तैयार की जो आज भी सुनते ही दिल कह उठता है, अरे ये गीत तो हमारे ज़माने का है। तो आइए कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमों के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर दुर्गादास से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की।

और अब बारी है उपेन नैयर साहब के संगीत निर्देशन में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत। ऐसा गीत जिसमें नोकझोंक भी है, मुस्कान भी है और रोमांस भी, और ये गीत सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस दौर में गीतों में प्रेम को जिस खूबसूरत शरारत के साथ पेश किया जाता था, उसका शानदार उदाहरण है ये गीत। ओपी नैयर के संगीत में पंजाबी लोक धुनों और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का प्रभाव भी खूब सुनाई देता था।

दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक ऐसा गीत जिसमें तारीफ़ भी है, मोहब्बत भी है और शायरी की नज़ाकत भी है। इस गीत में महबूब की खूबसूरती की तुलना चांद से की गई है, लेकिन अंदाज़ इतना नर्म और शालीन है कि हर पंक्ति दिल को छू जाती है। रफ़ी का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ मिलकर ऐसा असर पैदा करते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई महफिल सजी हो और सामने कोई ख़ास शख्स बैठा हो।

और अब बात उस एहसास की जब कोई दूर चला जाए और उसकी यादें हर पल साथ रहने लगे। ये गीत याद और इंतजार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती के साथ रखता है। लता और रफी की आवाजों में छिपी कोमलता इसे और भी असरदार बना देती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मधुर धुन और गीत के सरल शब्द सीधा दिल से जुड़ते हैं। यही तो पुराने गीतों की खासियत थी, वे किसी एक कहानी के नहीं हर दिल की कहानी बन जाया करते थे।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं एक ऐसी धुन जिसे सुनते ही लगता है जैसे किसी ने प्रेम को बड़े नफासत से शब्द दे दिए हों। मदन मोहन को अक्सर गजल नुमा धुनों के लिए याद किया जाता है। उनकी धुनों में एक खास नज़ाकत थी जैसे संगीत को बहुत धीरे से छुआ गया हो। और लता मंगेशकर की आवाज़, वो आवाज़ जो भावनाओं को सिर्फ गाती नहीं थी उन्हें महसूस करा देती थी। ये गीत हमें उस दौर में ले जाता है जब प्यार का इजहार आंखों से भी हो जाता था और कभी कभी सचमुच एक नज़र पूरी कहानी कह देती थी।

और अब एक ही जो माहौल में कश्मीर की ठंडी हवा घोल दे। शम्मी कपूर का अंदाज, शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की। शम्मी कपूर के मसमौला अंदाज के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ का जो मेल बना, उसने हिंदी सिनेमा के रोमांस को एक नया रंग दिया। ओपी नैयर के संगीत में लय इतनी जीवंत होती थी कि गीत सुनते ही मन अपने आप झूमने लगता था।

दोस्तों, आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जिसमें मिल जाने की खुशी है। 60 के दशक की फिल्मों में प्रेम कहानी अक्सर गीतों के सहारे आगे बढ़ती थी। नायक नायिका के बीच जो बात संवाद भी नहीं कही जाती थी, वो गीत कह देता था। इस गीत की धुन में वही खुशी है जैसे जिंदगी को अचानक अपना साथी मिल गया हो।

और अब आज की इस संगीत यात्रा को एक खूबसूरत एहसास के साथ विराम देते हैं। कहते भी हैं कि कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो वक्त को ही अपने साथ पुराना कर देते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के मैटनी मेलोडीज से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक और दौर की यादों के साथ, कुछ और सदाबहार धुनों के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

कराने वाला शख्स नहीं होता, बल्कि वो बच्चों की शख्सियत का मैमार और इनकी रूह को संवारने वाला होता है। उस्ताद ही अंधेरे में रोशनी का मीनार बनकर जहालत और अंधेरों को दूर करता है और तालिब इल्म को सही और गलत में तमीज़ सिखाता है। उस्ताद माशरे का वो मैमार है जो नई नस्ल की किरदार साजी करता है। वालदैन के बाद उस्ताद ही वो शख्स है जो इंसान को इल्म व शऊर, तहजीब और ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों की सलाहियतों को पहचान कर इन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देता है। वो मुश्किलात में हौसला देता है और नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करने का जज्बा पैदा करता है। देखा न कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर। एक बासलाहियत और मुखलिस उस्ताद पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। यह कौल है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता पर बादशाह बना देता है। हमें चाहिए कि यौम असातिज़ा को सिर्फ एक रस्मी दिन के तौर पर न मनाएं, बल्कि अपने असातिज़ा का एहतराम, इनकी तालीमात पर अमल, अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। उस्ताद कौम का सरमाया और मुस्तकबिल का मैमार है। उस्ताद का एहतराम दरअसल इल्म व शऊर और मुस्तकबिल का एहतराम है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। इस अजीम मकाम और खिदमात के एतराफ में हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है, जो परसों यानि 5 सितंबर को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। आइए सामईन, अब चलते हैं आबशार गज़ल की तरफ।

सारा गजल एक छोटा सा लफ्ज लेकिन अपने अंदर हजारों रंगीनियां समेटे हुए। गजल वो सिंफे सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है और हमें अपने इर्द गिर्द औसे कजा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं। और रूह को सुकून देने वाली सिंफ है ये, जहाँ जहन और दिल को शादमानी अता करती है वहीं एहसासात का खूबसूरत इजहार भी है। मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, खुशबू अल्फाज में कब है मेरे इजहार में है।

सामईन, अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशार गज़ल। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: दोस्तों खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और हमारे साथी
2: मैं आकाश
1: दोनों करते हैं आपको नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और आज शुरुआत कहां से करें, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि भारत में एक चुनौती है, भारत के सामने भारतीय टीम दुबई में इस समय महिला टीम संघर्ष कर रही है एशिया कप में, और भारत में एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी का अगले साल में। इसके अलावा भी बीपीएल का कल समापन हुआ है, वो खबर भी है हमारे पास। एथलेटिक्स की खबर है, खबर है स्क्वाश की, और दूसरे खेलों की तरफ भी हम आपको ले जाएंगे। सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट पर भी हमारे पास खबर है। तो शुरुआत करते हैं महिला एशिया कप से, क्योंकि दुबई में आज भारत का ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला कुछ ही घंटों में होने वाला है, और आज भारतीय टीम के सामने बहुत कठिन चुनौती तो नहीं है, लेकिन भारतीय टीम को सजग रहना होगा। पिछले मैच में जिस तरह से थाईलैंड की टीम के खिलाफ भारत ने प्रदर्शन किया था, उससे सचेत रहने की आवश्यकता भारतीय बल्लेबाजों को जरूर होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।

जब बात महिला एशिया कप की आती है तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम सिर्फ एक प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक महाशक्ति और इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम के रूप में लिया जाता है। नीले रंग की जर्सी में सजी मैदान पर उतरने वाली हमारी टीम सिर्फ मैच नहीं खेलती बल्कि क्रिकेट के इतिहास में अपनी महाशक्ति होने की एक नई इबारत लिखती है। एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय टीम जब भी मैदान पर कदम रखती है तो उसका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने खेल का लोहा मनवाना होता है। अनुभवी दिग्गजों के रणनीतिक दिमाग और युवा खिलाड़ियों के आक्रामक जज्बे से लैस ये टीम भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य की अगुवाई कर रही है। अपनी धारदार गेंदबाजी, मैदान पर चीते जैसी फुर्ती और बल्ले से रनों की बरसात करने की क्षमता के साथ भारतीय टीम महिला एशिया कप की सबसे बड़ी दावेदार और हर विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में विमेंस एशिया कप के 10वें एडिशन में भारत की महिला टीम ग्रुप ए में आज अपना दूसरा मैच खेलने उतरने वाली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडियन टीम का सामना हांगकांग से होने वाला है। मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। 7:30 बजे इसका टॉस होगा। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार भारत और हांगकांग की महिला टीमें आमने सामने

0: होंगी। ग्रुप ए में भारत 2 अंक के साथ टॉप पर है। पहले मुकाबले में उसने थाईलैंड को आसानी से 94 रन से हराया था। ये मुकाबला जीतने पर टीम 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसकी वजह है कि भारत के जीतने की सूरत में पाकिस्तान के अलावा कोई और टीम 4 अंक तक नहीं पहुँच सकती। हम आपको बता दें कि हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। अपने ग्रुप में भारत ने अब तक सिर्फ 1 मैच खेला है और पाकिस्तान थाईलैंड के बराबर 2 अंक ही हैं, लेकिन 4.7 के बेहतर रन रेट से वो पहले नंबर पर है। पाकिस्तान ने भी 1 मैच खेला है, उसके भी 2 अंक हैं, लेकिन 1.75 के नेट रन रेट से वह दूसरे नंबर पर है। इस ग्रुप में थाईलैंड ही अकेली टीम है जिसने ग्रुप के अपने सभी 3 मैच खेल लिए हैं। उसके हांगकांग के खिलाफ जीत से 2 अंक और -2.05 के रन रेट से वह तीसरे नंबर पर है। आज भारत जैसी मजबूत टीम से भिड़ने जा रही हांगकांग की टीम ने 1 मैच खेला है जिसमें उसे हार मिली और उसका नेट रन रेट -0.3 है। यह टीम 4 टीमों में सबसे नीचे है। साल 2026 में भारतीय टीम के अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो उसने अब तक कुल 17 मैच खेले हैं। इनमें से टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 9 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, यानी हार के मुकाबले जीत का प्रतिशत कम रहा है। दूसरी ओर हांगकांग ने इस साल खेले गए 26 में से 16 मैच जीते हैं जबकि 10 में उसे हार मिली। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके मुकाबले एसोसिएट मेंबर्स टीम के साथ हुए हैं। हालांकि इस मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो बल्लेबाजी में टीम इंडिया की निगाह एक बार फिर 2 सलामी बल्लेबाजों, बाएं हाथ की स्मृति मानधना और विस्फोटक शेफाली वर्मा पर होगी। हरियाणा के रोहतक की शेफाली ने थाईलैंड के साथ पहले मुकाबले में स्मृति के साथ टीम को 3 ओवर में 38 रन की साझेदारी कर अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन अच्छी लय में दिख रहे स्मृति के रन आउट होने से ये साझेदारी टूटी थी। हालांकि शेफाली उसके बाद भी नहीं रुकी और उन्होंने नौसिखिया थाईलैंड के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए मात्र 38 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 64 रन जड़ दिए। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इसी मैच में अपना पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही प्रतिका रावल ने उनका अच्छा साथ निभाया था। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े थे। इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। कोई भी बैटर नहीं चल सकी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम के लिए 150 के पार पहुंचना तो क्या पूरे 20 ओवर खेलना भी मुश्किल होगा। लेकिन 10वें यानी अंतिम विकेट की साझेदारी में श्री चरणी और क्रांति गौड़ ने न सिर्फ निर्धारित ओवर तक बल्लेबाजी की बल्कि 16 गेंदों में 22 रन की साझेदारी कर टीम को 159 के स्कोर तक भी पहुंचाया था। ऐसे में शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी एक बार फिर से सबकी निगाहों में होगी। उन्होंने इस साल 17 पारियों में 150.14 की स्ट्राइक रेट से 503 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 64 रन रहा है, साथ ही 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। शेफाली ने इस साल T20 में 67 चौके और 16 छक्के लगाए हैं। दूसरी तरफ 172 मैच की 166 पारियों में 1 शतक और 25 अर्धशतकों के दम पर 30.17 की औसत से रन बनाने वाली स्मृति मानधना की प्रतिभा और क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से वे रन आउट हुई थी वो निराशाजनक था। बड़े मैचों में इस तरह की गलतियां न सिर्फ उन पर बल्कि टीम पर भी भारी पड़ सकती हैं। स्मृति को इस पर ध्यान देना होगा। वहीं जिस तरह से भारत का टॉप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में लड़खड़ाया वो भी अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि टीम के गेंदबाजी कोच आविष्कार सालवी मानते हैं कि बैटिंग के साथ कोई समस्या नहीं है।
1: That's the nature of the sport. You know, we are playing T20 sport, so it's not that every time that we get into and we will be executing our plans. There will be times when we will probably not execute the plans as great as we would have wanted to. So there will be a downfall, but if you see, there was a comeback also, and the way they came back really well, they stretched the partnership at the end, and those important runs were contributed from the middle order and the lower order batters, which probably created that 160 mark, and then after that, you saw how they bowled in the game.
0: आविष्कार का कहना सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि आज टीम के पास मौका है कि 5 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले अपने तरकश के सारे तीर अच्छे से आजमा ले। आगे मुकाबले और भी कठिन होते जाएंगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारती फूलमाली, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा जैसी बैटर को इस मैच में लय हासिल करनी ही होगी। जहां तक गेंदबाजी की बात है तो पिछले मैच में टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। स्पिन फ्रेंडली पिच पर श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने मिलकर विरोधी टीम के 5 विकेट झटक लिए थे। दीप्ति ने तो 1 ओवर और 1 गेंद में बिना कोई रन दिए 3 विकेट अपने नाम किए थे। श्री चरणी को 2 विकेट मिले थे। साथ ही तेज गेंदबाजों की क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा की जोड़ी ने भी 4 विकेट झटके थे। हम आपको बता दें कि श्री चरणी इस साल भारत की सबसे सफल बॉलर रही हैं। उन्होंने 16 मैचों में 29 विकेट चटकाए हैं। चरणी ने 6.71 की बेहद किफायती इकोनॉमी से रन दिए हैं। गेंदबाजी कोच आविष्कार सालवी भी श्री चरणी की गेंदबाजी की जमकर तारीफ करते हैं।
1: आई थिंक शी इज एक्सेप्शनल टैलेंट। शी इज क्रिएटेड अ इंपैक्ट फ्रॉम डे 1 दैट शी हैज स्टेप्ड इनटू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम And 1 year down the line, you see where she has reached in the rankings as well.

0: I think she's someone who focuses majorly on her basics while she's practicing into the net. And every day there is some of the other things she wants to learn. And if you see the practice sessions, if you're following that, if you're covering that, you'll see every single time that she comes into the net, she challenges herself to different situations and tries to, you know, express herself into the net also.
1: दुबई में हो रहे इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. आज के मैच के दौरान भी दुबई में गर्मी रहेगी. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है. ऐसे में परिस्थितियों से तालमेल बिठाना आसान नहीं है. फिर भी आविष्कार सालवी कहते हैं कि उनकी टीम के खिलाड़ी कंडीशन फ्रेंडली हो गए हैं.
0: पोस्ट इंग्लैंड वी आल्सो हैड अ कैंप इन बैंगलोर, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड आल्सो वी वर्कड, आई मीन दैट वेदर, एंड देन वी आर ट्रैवलिंग टू दुबई. So as we know that professional cricketers, they have to handle different weathers. So they're acclimatizing and they're getting used to the conditions. And as far as bowling is concerned, we build them as their workload from the camp itself. And while they had those practice sessions in Dubai, they have had those overs under their belt. I think the conditions currently, they are hot and humid, but we already knew about it when we came into the tournament. So accordingly, we had prepared ourselves, we had trained ourselves, not just physically, but mentally as well. So we had actually planned that way, and when we came here, we practiced into these conditions, and we thought that girls got good exposure to the sort of surface where they were exposed to the practice sessions. I thought they utilized it really well, and getting into that first game against Thailand, I thought girls are, I mean they have acclimatized really well. And if you see in that game, there were pacers also who got the wickets, there were spinners also who were getting the wickets, and if you see the score line also, in the first 10 overs we were like 100. So I think it's about utilizing those conditions well. Whoever utilizes that, those conditions would probably would be at the better end of the game.
1: उधर हांगकांग की बात करें तो उसके लिए बल्लेबाज नताशा माइल्स और गेंदबाज करी चान इस साल बेस्ट परफॉर्मर रही हैं. नताशा ने इस साल खेले 25 पारियों में 39.28 की औसत और 97.14 के स्ट्राइक रेट से 784 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 100 रन है. गेंदबाजी में करी चान ने 26 मैचों में 4.81 की बेहतरीन इकोनॉमी से 39 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 15 रन देकर 5 विकेट रहा. अभी तक महिला एशिया कप में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है. फिर भी हांगकांग अगर आज उलटफेर करते हुए भारतीय टीम को शिकस्त दे दे तो उसके भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बन सकती है. आज के मुकाबले के मैदान की बात करें तो बाउंड्री बड़ी होने से यहां बड़े शॉट लगाना आसान नहीं होगा. गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं. हालांकि ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है. मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. हम आपको ये भी बता दें कि इस मैच से जुड़ा कार्यक्रम और मैच का विवरण आप आकाशवाणी पर शाम 7:30 बजे से सुन सकते हैं. हम आपको ये भी बता दें कि इस बार एशिया कप में 8 टीमों के बीच कुल 12 मैच होने हैं. श्रीलंका पिछला चैंपियन है, जबकि भारत 7 खिताब के साथ महिला एशिया कप की सबसे सफल टीम है. वनडे में 4 और टी20 में 3 बार खिताब भारत के नाम रहा. बांग्लादेश और श्रीलंका ने एक एक बार ट्रॉफी अपने नाम की है. टूर्नामेंट का पहला एडिशन 2004 में वनडे फॉर्मेट में हुआ था. इसके बाद शुरुआती 4 संस्करण 50 ओवर के फॉर्मेट में हुए. फिर 2012 में इस टूर्नामेंट को टी20 फॉर्मेट में बदल दिया गया. हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि पहली बार 2004 में भारत और श्रीलंका ने ही एशिया कप खेला था. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज हुई और भारत ने सभी 5 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया. इसके बाद 2005-06, 2006 और 2008 में भी टूर्नामेंट सीमित ओवर्स के एक दिवसीय फॉर्मेट में खेला गया. वनडे फॉर्मेट में भारतीय महिला टीम 2004 और 2005-06, 2006 और 2008 में चैंपियन बनी. 2012 में पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2020 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया. इसके बाद से सभी संस्करण इसी प्रारूप में खेले जा रहे हैं. 2020 फॉर्मेट में भारत ने 2012, 2016 और 2022 में खिताब जीता. बांग्लादेश की टीम 2020 फॉर्मेट में 2018 और श्रीलंका की टीम 2024 में चैंपियन बनी. इस बार 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है. दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें हैं. हर टीम को अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक एक मैच खेलना है. इसके बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम 13 सितंबर को फाइनल खेलेगी. भारत ग्रुप ए में है. उसके ग्रुप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान शामिल हैं. ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमारात और इंडोनेशिया शामिल हैं. इंडोनेशिया पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं. ये तो थी आज भारत और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले।

0: भविष्य का पूर्वावलोकन क्या है, उम्मीदें क्या हैं, उस पर बात। लेकिन अब बात कर लेते हैं कल रात खेले गए एक अहम मुकाबले की। आकाश बता रहे हैं क्या कुछ हुआ उस मैच में।
1: महिला T20 एशिया कप 2026 में श्रीलंका ने शानदार जीत के साथ अपना दमखम दिखाया। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों के बड़े अंतर से मात दी। इंडोनेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन नीलाक्षिका सिल्वा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 35 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन बनाए। इंडोनेशिया की ओर से गेंदबाजों ने भी अच्छी कोशिश की। नीलू डेवी ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि सांगमे प्रियानी को 2 सफलताएं मिली। 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडोनेशिया के बल्लेबाजों को शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने दबाव में डाला। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और इंडोनेशिया की पूरी टीम 18.3 ओवर में महज 49 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की सबसे बड़ी स्टार रही श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू। अट्टापट्टू ने सिर्फ 3.3 ओवर में महज 5 रन देकर 7 विकेट झटक लिए। नतीजा, श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हरा दिया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाएं तो भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर है।

0: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाई भेजे पीएस नाहवकर और इनका पूरा परिवार। मलकापुर महाराष्ट्र से फरमाई भेजी है नारायण इंगले और तोपान ताड़े ने, सोपान ताड़े जी ने, और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव खारी अढ़ानी जिला सिरसा हरियाणा से भेजने वाले हैं सतवीर सिंह बिजनारिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई बडाली देशमुख महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं राजेश खोबर खेड़े और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है साहू नगर यवतमाल से भेजने वाले भाई हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और परिवार के सभी सदस्य। भिलाई छत्तीसगढ़ से भी हमें फरमाइश भेजी है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और परिवार के सभी सदस्यों की। संदीप मक्कड़ और ज्योति मक्कड़ ने भी हमें फरमाइश भेजी है और इनके सभी परिवार के सभी सदस्यों ने भेजी है पिंगावाला चौक गोरेया जालंधर से ये फरमाइश भेजी गई है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी फरमाइश आई है मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर देवेंद्र सिंह की आवाज़ में ये राग।

0: शांति का फल सफल कमाई सबर करे सुख होश है। बहुत ही बढ़िया उपदेशक रागनी हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई देवेंद्र सिंह की आवाज में।
1: और देखिए अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेंद्र सरदाना, उनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं। ये SMS हमें मिला है बक्सर बिहार से भेजने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी और इनका पूरा परिवार, डुमराव बिहार से हमें फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर W अंसारी और इनका पूरा परिवार, सारेमपुर बक्सर से भी फरमाइश भेज रहे हैं राजेश डी अंसारी और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ के दतरंगी से हमें फरमाइश भेज रहे हैं भागवत वर्मा और इनका पूरा परिवार, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं राष्ट्रपाल गजबी और इनका पूरा परिवार, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय और इनका पूरा परिवार, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे प्रतीक राय और इनका पूरा परिवार,
0: बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से ये फरमाइश भेजी है राजेंद्र नागर और परिवार के सभी सदस्यों ने, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से ये फरमाइश भेजी है रमेश कुमार कंबोज और परिवार के सभी सदस्यों ने, ये फरमाइश हमें मिली है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से भेजने वाले भाई हैं ताज मोहम्मद अंसारी और परिवार के सभी सदस्य, ये फरमाइश सहारनपुर से हमें भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और परिवार के सभी सदस्य, खैल बाजार पानीपत से फरमाइश भेजी है नरेश मल्होत्रा नीटू और परिवार के सभी सदस्यों ने, ये फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ से।

0: भेजने वाले भाई हैं जीतू ध्रुव और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से भेजी है। भेजने वाले भाई हैं विजेंद्र कुमार जयजान और परिवार के सभी सदस्य।
1: जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकरलाल जायसवाल और उनका पूरा परिवार। तेजपाल सिंह प्रजापत और हमें फरमाइश भेज रहे हैं चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से भेज, और भाई ये अपने सभी परिवार के साथ हमें ये फरमाइश भेज रहे हैं जो सुनना चाहते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना को ही। ये फरमाइश हमारे पास में ये छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से भेजने वाले हैं कमलेश कुमार शाहू और इनका पूरा परिवार। और सादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी से भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार। गाँव कलना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कटवासरा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है गांव फरांसी जिला हिसार से भेजने वाले हैं राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो पहल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पाराशर।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए

सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स। आइए श्रोता, आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। गौतम, अगर बात करें हम आज के कार्यक्रम किसान वाणी की, तो आज हम बहुत सारी चीजें हमारे सभी किसान मित्रों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों बहनों को नई नई जानकारियों से अवगत कराना, जिसमें हम बात करते हैं एक योजना के बारे में, उसके बाद अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञ को भी, जो कि एक विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को नई नई जानकारी वो मिलती रहे। उसके बाद बाजार भाव, मौसम की भी बात करते हैं
3: और साथ ही साथ

0: इस समय पर हमारे किसान मित्रों को क्या कुछ अपने खेतों में करना चाहिए, इसके लिए विशेष तौर पर कृषि सलाह भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत विशेष योजना जो आपके बड़े काम की है, हम बात करने वाले हैं गौतम आज एकीकृत कृषि विपणन योजना के बारे में। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य देश में कृषि विपणन, भंडारण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
1: बिल्कुल, एकीकृत कृषि विपणन से जो किसान हैं वो अपनी उपज को सुरक्षित रखकर उचित समय पर बेच सकते हैं और बाजार की जो सही जानकारी मिलने में आसानी होती है इस योजना के तहत।
0: जी बिल्कुल, और देखिए बहुत सारी चीजें जिससे इनका फायदा वो उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान मित्र है उनको एक बेहतर बाजार उपलब्ध हो जाए, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसका जो मूल्य है वो भी सुनिश्चित हो जाए।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और किसान अपनी मेहनत से अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का जो है उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन के बाद अगर उनको उचित बाजार और उचित मूल्य न मिले तो कई बार किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, देखिए योजना का महत्व तो बढ़ ही जाता है और जब हमारे किसान मित्रों से हम बात करते हैं किस तरह से उनको इसका फायदा मिलता है तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उनको जो मार्केटिंग है उसमें काफी सहूलियत मिल जाती है कि किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना जो सामान है बाजार तक कैसे लेकर जाए इसकी सुविधा उपलब्ध है, कई जगह पर सब्सिडी भी उपलब्ध है। ये सारी चीजें इस योजना के तहत हमारे किसान मित्रों को मिलती हैं।
1: जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं आरती की एकीकृत कृषि विपणन योजना वो किसानों को खेत से बाजार तक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कृषि उपज की बर्बादी कम हो सकती है, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र जो है अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धी बन सकती है।
0: और गौतम, योजना की हमने बात तो कर ली लेकिन आज के कार्यक्रम में हम एक खास विषय भी लेकर आए हैं, उस विषय के बारे में भी अपने साथी को बता देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में।
1: जी बिल्कुल, भारत में कृषि कार्यों की बात करें अगर आरती, तो इसके दौरान बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष जैसे पराली, भूसा, फसल के डंठल, गोबर तथा अन्य जो जैविक कचरा उत्पन्न होता है उसका उचित प्रबंधन अगर ना किया जाए तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। और कृषि अवशेष जैविक कचरे का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं, जो आज का हमारा विषय भी है।
0: बिल्कुल सही कहा गौतम, सबसे बड़ी बात यह है कि पराली और कृषि अवशेष का उचित प्रबंधन हो जाता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, पराली जलाने की जो समस्या है ये भी बहुत हद तक कम हो जाती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने आरती। और विषय कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस कैसे बनाया जाता है, आज के जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, आप डेयरी विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में।
2: सक्सेना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस ये हमारे जो कृषि के अवशेष हैं या पशुधन में जो गोबर का अंश होता है उसके अवशेष हैं, उनसे फर्मेंटेशन की प्रतिक्रिया के द्वारा, एनरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहती है तो जो उसका कार्बनिक तत्व होता है वो मुख्यतः बायोगैस के रूप में, जिसमें मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थोड़ी बहुत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, इसका उत्पादन होता है। और ये हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित रहा है कि गोबर के द्वारा उससे ऊर्जा एवं उर्वरक का निर्माण किया जाए।
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ये कृषि अवशेष और जो जैविक कचरा है इससे CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है?
3: अब जो हमारे कृषि अवशेष, खास तौर से जो धान की पराली है या शुगर केन टॉप है या और भी ऐसे तमाम सारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वेस्ट निकलते हैं, उन सब में ऐसे तत्व होते हैं जिनको फर्मेंट करके गैस बनाई जा सकती है और उस गैस का शुद्धिकरण करके अर्थात उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके मीथेन की मात्रा बढ़ा के करीब 95% तक ले जाते हैं और उसको फिर कंप्रेस्ड कर देते हैं उच्च दबाव पे और उसको सिलेंडरों में भर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता हो वहां पे उसको गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और यदि जरूरत पड़े तो उससे वाहन को भी चला सकते हैं, बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये पिछले लगभग 5-10 सालों में कंप्रेस्ड बायोगैस जो अभी तक अनुसंधान का विषय था, इसको जो है भारत सरकार ने सतत विद्युत उत्पादन योजना के तहत

0: इसको बहुत बढ़ावा दिया है। और आज देश में हमारे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ये कृषि अवशेष और जैविक अवशेष जिसमें मुख्यतः गाय और भैंसों का गोबर आता है उपलब्ध है, या जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, या जहाँ पे शुगर मिल्स लगी हुई हैं, उनके यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस की विधि से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है।
1: जी बिल्कुल है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी हमारे कृषि अवशेष जैसे धान की पराली हो गया, भूसा हो गया, और जो हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर हो गया, या अन्य जो भी जैविक उत्पाद जो घरों से निकलते हैं, क्या ये सभी प्रयोग किए जा सकते हैं?
0: इसमें से मुख्यतः जो कह लें कि हमारे यहाँ आवश्यकता होती है कि कैसे हम ऊर्जा की आपूर्ति करें और साथ ही साथ जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाएं, तो इसमें जो ये सीबीजी का उत्पादन होता है इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस तो मिलती ही मिलती है, साथ में ही दो तत्व और मिलते हैं। एक जो इसमें से निकलने वाला जिसको कहते हैं कि वॉश, जो लिक्विड निकलता है
1: जी,
0: वो बहुत ही उसमें उर्वरक शक्ति होती है, और दूसरा उसका प्रयोग जो इसमें स्लरी निकलती है उसमें से जो ठोस तत्व होते हैं उनको खेतों में डालने का काम होता है, क्योंकि उनमें कार्बन नाइट्रोजन का अंश काफी कुछ होता है और ऐसे जैविक कीटाणु होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पराली की भी जो एक पर्यावरण से संबंधित है कि किसान जो है उसको जलाते थे, तो अब उनको चूंकि उस पराली के अच्छा मूल्य मिलने लगा है और वो पराली की चाहे ब्रिकेट बना के उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी होता है और उसको जो है वो पशु के चारे में भी होता है, और एक तरीके से देखा जाए कि वापस से हम उसी प्रणाली में पहुंच गए जहां पे कोई भी अवशेष बचता नहीं है और सबका सब जो जमीन से लिया कृषि उत्पाद वो जमीन में ही वापस चला जाता है और साथ में हमें ऊर्जा और उर्वरक की प्राप्ति हो जाती है।
1: कहने का मतलब यह है कि पराली का भी ठीक से प्रबंधन हो जाता है, और पराली द्वारा जो हमारे किसान भाई कभी कभी उसको जलाते थे, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था, उससे भी राहत,
0: अब उससे भी राहत मिलेगी और चूंकि उसका उन्हें आर्थिक मूल्य मिलेगा तो इसलिए वो निश्चित रूप से अब उसे जलाने का निर्णय नहीं करेंगे।
1: तो जिस तरीके से आपने सीबीजी की बात करी, उसमें बायोगैस की बात करी, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं कि जिससे बायोगैस बनती है?
0: इसमें मुख्य तो एक होता है गैस का उत्पादन
1: जी,
0: ये पहला चरण है। उसके लिए फर्मेंटर लगते हैं, उन फर्मेंटर में चाहिए होता है कि हमको जो ईंधन के लिए कृषि के उत्पाद को पल्वराइज करके गोबर को साफ करके उसमें मिलाते हैं और साथ में पानी मिलाते हैं जिससे स्लरी बन जाती है, और ये चैम्बर चूंकि एनोरोबिक होते हैं इनमें हवा कहीं से नहीं जाती इसलिए यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। अब जो गैस बनती है ये एक दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ ये एकत्रित होती है और उसमें से गैस का शुद्धिकरण होता है जिसमें मॉइस्चर भी हम पाइपलाइन से निकाल लेते हैं, और साथ में जो मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 28 से 32% होती है उसको भी हम इसमें अतिरिक्त दबाव दे के उसको पानी में घोल के निकाल लेते हैं, और जो बचती है वो बचती है मीथेन गैस जिसको हम तीसरे चैम्बर में एकत्रित करते हैं और वहां से फिर उसको ले जा करके कंप्रेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस। तो एक तरीके से 95% शुद्धता वाली मीथेन गैस को सिलेंडरों में भरते हैं और वो कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है।
1: ये कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग क्या सीएनजी के तौर पर भी किया जा सकता है?
0: जिस तरीके से हमारी यहाँ पाइप्ड गैस आती है घरों में या जो गाड़ियों में भरी जाती है नेचुरल गैस, तो वो सिलेंडर्स होते हैं, तो इसको भी सिलेंडर्स में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इनको वाहन चलाने में भी प्रयोग किया जा सकता है, और प्रयोग तो बड़े सफल हुए हैं। जो संस्थाएं जिन्होंने इसको अपनाया है कि वो दूध लाने वाली गाड़ियां हैं या जो चारा ले जाने वाली गाड़ियां हैं, फीड ले जाने वाली गाड़ियां हैं, वो सब उन्हीं सिलेंडरों से चलती हैं।

0: उसमें एक तरीके से कह लें कि वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है जो कि हमारे को बायोगैस के द्वारा मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रही गैस की, लेकिन जब हम कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ सलरी भी निकलती है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: वो
0: कहा
1: किसानों के
0: आपने।
1: लिए किस तरीके से उपयोगी है?
0: जिन लोगों ने बायोगैस के प्लांट लगाए हुए हैं उनका मुख्य बिंदु था कि हमें बायोगैस बनाना है और उन्होंने अपना सारा आर्थिक दृष्टिकोण बायोगैस तक सीमित रखा। लेकिन उनको फिर अनुभव हुआ कि इसमें तो जो स्लरी निकल रही है और जो सॉलिड निकल रहे हैं टैंक से उनकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है। और चूंकि उनकी जानकारी में आया कि इसको खाद बना के इसमें कुछ और तत्व मिला के ये संपूर्ण खाद का काम कर सकते हैं और यदि इसको खेतों में डाला जाए तो उपज बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में बहुत सारी उनको मदद मिलती है और एक तरीके से देखा जाए जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम करना पड़ता है तो उसकी लागत कम हो जाती है। तो अब तीनों आयाम हैं कि
1: जी
0: बायोगैस मुख्य उसका आर्थिक स्रोत है, दूसरा स्लरी और उसमें से निकलने वाला जो सॉलिड तत्व है वो जो कि कंपोस्टिंग में जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सैलरी का जिक्र किया, क्या ये जैविक खाद की तरह प्रयोग किया जा सकता है इसको?
0: निश्चित रूप से कुछ लोग केचुए के भी इसमें मिश्र करते हैं जिससे कि वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, कुछ लोग इसमें कीटाणु मिलाते हैं, कुछ इसमें जीवाणु का अंश डालते हैं जिससे तरह तरह के खाद बन जाती है जो कि हमारे खरीफ की फसल और रबी की फसल में बहुत ही उपयोगी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे सभी किसान भाई सीपीजी प्लांट नहीं लगा सकते, या
0: निश्चित रूप
1: सभी
0: से
1: के पास
0: बिल्कुल सही
1: बायोगैस
0: कहा।
1: संयंत्र नहीं है, लेकिन जो कृषि अवशेष है वो सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है, या
0: बिल्कुल
1: जो पशु पालते हैं उनके पास भी गोबर रहता है, तो इसको किस तरीके से वो बेच सकते हैं?
0: देखिए पिछले 5 सालों में ये एक प्रयोग के तौर पे और सरकार के सहयोग से सतत विद्युत उत्पादन योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बायोगैस की नीति बनी इसमें प्लांट लगाए गए और उसके जो परिणाम मिले उसके आधार पे बहुत सारे अवसर पैदा हुए। उनमें एक अवसर ये पैदा हुआ कि हर किसान बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकता
1: जी
0: है तो क्यों ना वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एक सामूहिक रूप पे कोऑपरेटिव मॉडल पे सरकार गांव स्तर पे बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है और युवा लोगों को कि आप गोबर कलेक्ट करें और वहां पे ले जाके उसको दें, आपको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको भी उससे फायदा होगा और जो बायोगैस प्लांट चलेगा उससे जो आमदनी होगी वो किसान को ही लोगों को, क्योंकि आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 रुपए से लेके 20 रुपए तक किसानों को गोबर का मूल्य मिल रहा है। तो जिसको वो छोड़ देते थे
1: जी
0: ऐसे ही नाली में बहा देते थे या ढेर लगा के खाद बनती रहती थी, अब उसके प्रति वो बहुत जागरूक हो गए हैं और इसमें सरकार की भी तरह तरीके की योजनाएं आ रही हैं जिसमें ना केवल बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बल्कि उन्होंने ये सर्विस प्रोवाइडर जो एक तरीके से नए नए अवसर रोजगार के कुंभ हैं। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफी विकसित हो रही है तो उनकी जो भी पील है, जो भी चीजें निकलती हैं उन सब का प्रयोग उस एरिया में, तो बायोगैस तरह तरह के उत्पादों से बन रही है। जहां जो चीज उपलब्ध है उस चीज से बायोगैस बनाने का कार्य चल रहा है, जहां गोबर है वहां गोबर से, जहां कृषि उत्पाद और गोबर दोनों हैं वहां पे दोनों से, जहां शुगर केन टॉप भी है वहां शुगर केन टॉप से भी, और जो भी कृषि अवशेष है उससे बनाने का कार्य हो रहा है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या छोटे और सीमांत किसान हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
0: असल में इसका सही माने में तो लाभ हमारे छोटे किसानों को मिलेगा और आज किसानों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। उनके गांव स्तर पे ऐसी योजनाएं जा रही हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की और जो जिला स्तर की कि जहां पे वो किसान आपस में मिलके एक समूह बना के जिसको कहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिविजुअली हमारे किसान नहीं अपना सकते उसको सामूहिक ग्रुप बना के और एक केंद्र वहां पे बना

0: सके, जिससे कि सभी को उसका लाभ मिल सके। तो उनमें से ये बायोगैस की भी योजना है।
1: तो ये सीवीजी प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद कर रही है?
0: बहुत मदद कर रही है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा पैदा हो रही है, ये हमारा जो आयात होता है फॉसिल फ्यूल का, कच्चे तेल का जो आयात होता है, उस पे इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव है। इसीलिए सरकार ने इस ओर इतना ध्यान इसको बढ़ाने का फैसला किया है।
1: तो क्या इसमें जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, उनके लिए कुछ रोजगार की संभावना है?
0: बहुत संभावनाएं हैं। हमारे जो युवा हैं आज की समय में, इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो युवा हैं उनको इस चीज का प्रशिक्षण मिले कि जो गांव में कृषि एवं पशुपालन से बचे हुए अवशेष हैं, जिनमें गोबर भी है, जिनमें पराली भी है, जिनमें गेहूं का भूसा भी है, जिसमें गन्ने की शुगर केन टॉप भी है, उन सब का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करें और उससे आर्थिक लाभ कैसे पाएं, और अपने यहाँ पानी का किस तरीके से कंजर्वेशन हो और जो अवशेष हैं उनका सही तरीके से प्रयोग हो, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक उत्थान उनका हो सके।
1: किसी कार्य करने के लिए उसमें चुनौतियां भी होती हैं, तो इसमें
0: निश्चित रूप से चुनौतियां भी होती हैं। चुनौतियां किस तरीके की होती हैं, उनमें तकनीकी से संबंधित होती हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ है, या बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नीतिगत हैं कि पॉलिसी की वजह से उसमें कोई कमी रह जाती है। तो इस तरीके के जो चुनौतियां हैं, और इसमें एक विषय ये भी आता है कि सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन बैंकों का भी होता है बहुत बड़ा रोल कि वो इसके लिए लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोन की गारंटी कौन लेता है। तो ये सारी योजनाएं संपूर्ण रूप से बनाई गई हैं कि अगर टेक्नोलॉजी सही है, इससे प्रोडक्ट सही बन रहा है, तो इसको एडॉप्ट कैसे करें हमारे युवा, या जो समूह बना के कर रहे हैं, या जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी सर इस तरह के हो जिसमें कि उनके चार पैसे बच सके और लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके और जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं उनका सही तरीके से सदुपयोग हो सके।
1: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तकनीक से जुड़ करके अपनी आय बढ़ा सके?
0: हमारे जो किसान भाई और बहने हैं, उसमें दो तरीके के अमूमन हम लोग देखते हैं। एक उसी तरीके से खेती कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने देखा कि उनके माता पिता करते थे, और जो कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, पानी बचाने की बहुत सारी आ गई, सिंचाई करने के लिए ड्रोन आ गए, तो मेरा हमेशा उन सब से ये आग्रह रहता है, आज का ये युग है, ये तकनीकी का युग है, इसमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को अपनाएं और इस मुख्य धारा से जुड़ें, और ज्यादा से ज्यादा उपज किस तरीके से ली जाए, ये आज के जो सरकार है इसके प्रति बहुत ही जागरूक है और कर्तव्यबद्ध है कि किसानों को टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन होना चाहिए। बायोगैस उनमें से एक प्रतिक्रिया है, ड्रोन उसी के प्रणाली में है, तो बहुत कुछ एक हमारे गाँव का स्वरूप बदल रहा है।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहन जी सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुना कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस किस तरह से बनाई जा सकती है, और इस विषय पर बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, डेयरी विशेषज्ञ है नई दिल्ली से। और गौतम, देखिए बहुत खुशियों का माहौल बना हुआ है, कल जन्माष्टमी भी है, तो इस अवसर पर क्यों ना एक कृष्ण भजन सुना जाए चंद्रपाल और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं।

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे चंद्रपाल और साथी की आवाज में ये कृष्ण भजन।
1: और साथियों, अब समय हो गया है कि आप तक जानकारी पहुंचाए मौसम के हाल की। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। इस क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर भारी से मध्यम वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है।
0: वहीं अगर तापमान की बात करें आरती, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: साथियों, अब आपको बताते हैं मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। धान की फसल इस समय मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि बाली बनने वाली स्थिति में है, इसलिए फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए आप फिरोमन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं।
0: बिल्कुल। वहीं आरती, अगर किसान इस समय अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो उनके लिए बीज की व्यवस्था कर लें और खेतों को पूरी तरह से तैयार कर लें।
1: साथ ही साथ किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि इस समय सरसों, साग पूसा, सागे, मूली, समर लौंग, पालक ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति तथा धनिया पंथ हरितमा या सकर किस्मों की बुआई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर कर सकते हैं आप।
0: वहीं अगर किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वर्षा से उन लताओं को गलने से बचाया जा सके।
1: तो साथियों, ये थी मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। अब जानते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव।
0: बिल्कुल आरती, बहुत सही कहा आपने। आलू की अगर हम लोग बात करें तो आलू जो है बाजार में 15 से 18 रुपए प्रति किलो, प्याज की बात करें तो 35 से 45 रुपए प्रति किलो, टमाटर की बात करें तो 25 से 35

0: रुपए प्रति किलो, बैंगन की बात करें तो 20 से 30 रुपए प्रति किलो और बीन्स की बात करें तो 40 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है।
1: जी गौतम, सब्जियों की बात तो हो गई, आइए जानते हैं क्या है फलों के भाव। सेब 100 से 150 रुपए प्रति किलो, वहीं केले की बात करें तो ये भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो। अमरूद की बात करते हैं तो ये 60 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम। मौसम्बी की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम।
0: तो आरती अपने किसान भाइयों के साथ बहुत सारी जानकारियों से भी उनको अवगत कराया और अब समय है कि किसान भाई अपना सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। आप हमें अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें।
1: जी साथियों, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीत और गजल और कवाली का।

तो अभी आपने सुनी ये खूबसूरत सी गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में है। और अब वक्त है गजल की दुनिया में एक और ऐसे शानदार फनकार को सुनने का, जिनकी आवाज़ में जादू जो है नज़ाकत भी थी, दर्द भी था और मोहब्बत की एक खास मिठास भी है। तो चलिए अगली हम आपको जो गजल सुनाने जा रही हैं वो है

0: रखे।
1: तो अभी आप सुन रहे थे गजल कवाली का ये कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने केंद्रित हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजनाओं पर भी चर्चा की और राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। श्री यादव ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उनके सकारात्मक प्रयासों को आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के दौरान

0: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों तथा अन्य उपायों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत कार्य कर रही है। श्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 24 घंटे जमीनी निगरानी, हॉटस्पॉट केंद्रित हस्तक्षेप और वार्ड स्तर पर सघन निगरानी पर केंद्रीय व्यापक बहुस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के तेखन डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 नई शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच अंतर्राज्यीय ई बस सेवा की भी शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं बल्कि उनका स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि तेखंड का 4 लेन वाला स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र वाहनों की उपयोगिता जांच को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस केंद्र की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 72,000 वाहन होगी, जिसमें 52,000 भारी या हल्के मोटर वाहन हैं और 20,000 दोपहिये वाहन शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डीटीसी बेड़े में शामिल की गई 50 नई ईवी बसें सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डीटीसी हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने से क्षेत्र में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ेगी और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी जैसे कई स्तरों पर काम कर रही है।
2: मैं ये समझती हूँ कि क्लीन मोबिलिटी की ओर ये एक बहुत ही सशक्त कदम है और लगातार दिल्ली सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ केवल समस्याएं नहीं उन समस्याओं को समाधान देने की बात हो रही है।
1: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मल्टी यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम होने के साथ साथ यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने बताया कि डक्ट का उपयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थानों पर बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डक्ट के तकनीकी डिजाइन में हवादार, अग्नि सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए चांदनी चौक में एक्सप्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोरसराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट पहल अलग अलग एजेंसियों द्वारा अपनी अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी उपयोगी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: दिल्ली सरकार ने आज 75 CM श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल

0: पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसे व्यवहार, आदतों और कौशल का विकास करना है जो उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाए।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल के बारे में कहा कि जिस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों के सीखने की नींव तैयार करता है, उसी प्रकार बुनियादी कल्याण साक्षरता बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की आधारभूत समझ तथा कौशल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 21 व्यक्तिगत आदतों, 7 सामाजिक कौशल और 7 पर्यावरणीय कौशल को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी और दूसरों की देखभाल करने तथा पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए तैयार करना है। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय और एक विदेशी बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के अंतर्गत विदेशी कंपनी अपना एआई एंगेज डेवलपर प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएंगे और इसके जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अगले साल तक 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे औद्योगिक उपकरण का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ उन्हें टेस्ट कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज विश्वविद्यालय में बने भारत के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण की जो समस्याएं लोगों के द्वारा किए जा रहे असंतुलित कार्यों से पैदा हुई हैं, उसका समाधान अकेले तकनीक से नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान की अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने यह आदेश हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के खिलाफ बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की कार्रवाई पर उत्पन्न विवाद से जुड़े मामले पर दिया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की लोकतांत्रिक और संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सुनियोजित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हंगामा, अभद्रता, पीठासीन अधिकारी का अपमान और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के विशेष पुलिस इकाई की आत्मरक्षा शाखा ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में 450 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में कैडेट्स को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यवहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह नई सुविधा अस्पताल चेन की लोगों की सेवा के 25 साल के सफर में एक और अहम पड़ाव है। यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया। यातायात पुलिस के अनुसार रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यातायात और मार्ग परिवर्तन रहेगा। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गों से बचने को कहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर राजधानी में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोहों से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारियों सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम गीत मालिका का, तो क्यों ना शुरुआत करें अभिजीत के गाए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

साथियों, अभी आपने सुना ये फिल्म यस बॉस से अभिजीत की आवाज़ में ये गाना और इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म स्टाइल से, और आवाज़ रहेगी अभिजीत और हेमा सरदेसाई की।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम है गीतमालिका, और अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी अभिजीत और हेमंत सरदेसाई की। आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, और आवाज़ है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, और अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का। लीजिए, पेश है हमारा ये कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी की इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना बलदेव गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से ब्रजवासियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे, तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहां वो रुकें, होटल हो धर्मशाला हो या हमारे शेल्टर होम भी तैयार किए गए हैं, और वहां भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डाइवर्जन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लाइन ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं और हम आपकी सेवा के लिए लगातार

0: कृत संकल्पित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश जो हम लोगों के जीवन में हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पे आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रज जरूर आएं, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
1: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के मानते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक शोभा यात्रा भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागर जो वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका शुभारंभ और लोकार्पण है। और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। आप सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आएं और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाएं।
1: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम्स की लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती हैं इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहाँ पे है रहता और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
4: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता देव देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस के

0: आपको हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म महोत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और ठाकुर श्री केशवदेव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
1: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
2: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में इस ब्रज में, क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, जो उत्सव का हमारा 5253वां जन्मोत्सव ब्रज में इस मथुरा में इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जितने भी हमारे ब्रज के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
3: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि, जन्म महोत्सव, वर्षगांठ और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर वंदनवार बन रही हैं, ध्वजा पताका तोरण कलश सजाए जा रहे हैं और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे और जो कवि जन है वो नित्य नई नई नई बधाइयाँ रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा। और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा, 7 प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में जिसको पाग कहते हैं, जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है, तो जच्चा और बच्चा ये दोनों का भोग लगाने का ये सामग्री है पाग। तो खरबूजे के बीज की पाग, मिंगी की पाग, काजू की पाग और चिरौंजी की पाग, ऐसे 7 प्रकार की ये पाग बन रही हैं। लोग नए नए कपड़ा बनवा रहे हैं, जो गोपियां हैं, महिलाएं हैं, वो तरह तरह के लहंगा ओढ़ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोले और श्रृंगार करेंगी, और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिरपेच बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्मगांठ है, जन्म महोत्सव है, तो पूरे मथुरा में और तो सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट जो आधुनिक व्यवस्था है वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
4: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधारकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु
5: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ दर्शन करने आए।

0: थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए। यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
1: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ। पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णमय है।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया।
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। और आइए अब सुनते हैं कुछ कृष्ण भजन।

श्रोताओं, अभी आपने मीरा बाई द्वारा रचित ये भजन सुना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये भजन।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना ये गीत, और आइए अब सुनवाते हैं आपको जगजीत सिंह की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, फिर इंग्लिश में और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: अयोध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि

0: को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के

0: केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. More from our correspondent.
3: Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. They also called for early completion of negotiations on the India-EU Investment Protection Agreement and the Geographical Indication Agreement. On defense and security, Belgium conveyed solidarity with India in the fight against terrorism and condemned the terror attack in Pahalgam. Both sides agreed to strengthen cooperation against terrorism and explore the establishment of a joint working group on counter-terrorism. The two countries also signed a letter of intent to strengthen defense cooperation through regular exchanges, training, research and defense industrial partnership. A memorandum of understanding was also signed between the Central Bureau of Investigation and the Federal Police of Belgium to combat transnational organized crime and cybercrime. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum, even in this challenging

0: In India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shak Hue tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from Bear Rajas caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया है। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन बढ़ाने से भी इत्तफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप में भारत और हांगकांग के दरमियान ग्रुप ए का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और बेल्जियम ने आज तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तआवुन को मजीद फरोग देने के अपने अज़्म की तौसीख की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने नई दिल्ली में दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकिरात के बाद जारी किए गए भारत बेल्जियम मुश्तरका बयानी में बाहमी तिजारत के शोबों में बढ़ते हुए तनवो का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत बेल्जियम कलीदी मुजाकिरात के आगाज का भी खैर मकदम किया। भारत और बेल्जियम ने अगले 5 बरस में बाहमी तिजारत को दोगुना करने के उमंगों से भरे हदफ भी तय किए हैं। दोनों मुल्कों ने अद्वियात साजी, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर्स, दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग, अहम नौयत की मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, खला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में तआवुन के खातिर खा इम्कान की भी निशानदेही की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे से मुतालिक मुज़ाकरात के कामयाब इख्तिताम और इस पर बरवक्त अमलावरी की ज़रूरत की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन सरमायाकारी तहफ़ माहदे और जुग्राफियाई इंडक्शन से मुतालिक माहदे पर मुज़ाकरात की जल्द अज जल्द तकमील की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दिफा और सलामती के मुतालिक बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजहती का इजहार किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने मुस्तकिल एक्सचेंजेस, तरबियत, तहकीक और दिफाई सनअती शराकतदारी के जरिए दिफाई तआवुन को मुस्तहकम करने के एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI और फेडरल पुलिस ऑफ बेल्जियम के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए ताकि बैन कौमी मुनज्जम जराइम और साइबर क्राइम से निपटा जा सके। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: भारत और बेल्जियम ने आज दिफाई तआवुन के इकरारनामे और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मफाहमत नामों समेत कई माहदे किए ताकि बैन मुल्की जराइम से निपटा जा सके। इनमें साइबर क्राइम और सिफारती तरबियत के माहदे शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रेस के लिए

0: बयान में जोर देकर कहा कि चैलेंजों से भरे इस माहौल में भी भारतीय मईशत ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली सहमाही में भारत में 7.8% शरह तरक्की दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए मौके का एक वसीला बनती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि बाहमी तआवुन के इम्कानात रिवायती शोबों से बालातर होकर वसअत इख्तियार करते हुए कलीदी शोबों जैसे दिफा और साफ तवानाई तक रसाई हासिल कर चुके हैं।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
0: प्रेस के लिए अपने बयान में बेल्जियम के वजीर आजम बाग दी वेवर ने भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत और तेजी से उभरती हुई मईशत कहकर उसकी सताइश की और भारत को अपना अहम इत्तेहादी करार दिया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे का महकमा सलाहियत में इजाफे, सिग्नलिंग में बेहतरी और खुदकार दरवाजों वाली सहूलत से लैस नई नस्ल की मुजाफाती ट्रेनें मुतारफ कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहा है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए लागत के रेलवे प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जनाब वैष्णव मुंबई से सिंधुदुर्ग के दरमियान चलने वाली ट्रेन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मखसूस मशरकी और मगरबी फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से मुल्क के दीगर हिस्सों में साजो सामान की हमलो नकल में सहूलत पैदा करते हुए महाराष्ट्र की सनअती तरक्की को इस्तेहकाम बख्शेंगे। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि मुंबई शहर में फिलहाल 3,200 लोकल ट्रेनें चल रही हैं और खिदमात में 10% के इजाफे से मुसाफिरों की आमोदरफ्त में खातिरखा इजाफा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 28 एसी लोकल ट्रेनें मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था, जिसके तहत पहली ट्रेन के अगले साल बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नई नस्ल की लोकल ट्रेनें मुंबई के मुजाफाती रेलवे निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाएंगी।
2: ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस करके इस काम को आगे लिया, में जो भी डिफिकल्टीज थी उनको दूर किया और अब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स का काम 100% कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही दिनों के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे कम्प्लीट ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
0: कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान मजमुई घरेलू पैदावार GDP के 7.8% नमू हासिल करने में छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के अहम रोल की सताइश की है। नई दिल्ली में आज FTA के आउटरीच प्रोग्राम से मुतालिक कौमी वर्कशॉप की सदारत करते हुए जनाब गोयल ने यह बात कही। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आजादाना तजारती समझौतों की बदौलत मुल्क के बड़े बरामदकार बनने की राह हमवार होगी। जनाब गोयल ने दुनिया के साथ मुल्क की तिजारत को फरोग देने की खातिर आजादाना तिजारती समझौतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुल्क गिर जामे कोशिश की अपील की। जनाब गोयल ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में कनाडा, मेक्सिको, चिली, जनूबी अमरीकी ममालिक, जनूबी अफ्रीकी कस्टम यूनियन, खलीजी ताउन काउंसिल और इसराइल के साथ आजादाना तजारती समझौतों को हतमी शक्ल देगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस कदम के जरिए मोल भाव की बेहतर अहलियत की बिना पर भारत को आलमी तिजारत के 75% हिस्से तक रसाई हासिल हो जाएगी। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में तरफेन की मरकूज वाबस्तगी के जरिए फिजाई आलूदगी का बंदोबस्त करने और इसे कंट्रोल करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माहौलियात महकमे के वुजरा और सेक्रेटरी और आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक बोर्ड्स के चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब यादव ने फिजाई आलूदगी से ज्यादा मौसर तौर पर निमटने के तई कोशिश करने की गरज से तरफेन की मरकूज वाबस्तगी और तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और बैराजों से पानी के अखराज की वजह से 23 जिले सैलाब से मुतासर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की और सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल की। वज़ीर आज़म ने काशी की नदियों की सतह आब की जानकारी ली और राहत कैंपों में किए जा रहे इंतजाम से आगाही हासिल की। वज़ीर आज़म ने वाराणसी के मेयर

अशोक तिवारी से भी टेलीफोन पर सैलाब की सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। दूसरी जानब उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने भी फरुखाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। जनाब आदित्यनाथ ने सैलाब से मुतासरा 1,000 कुंभों में राहती साजो सामान तकसीम किया। वजीर आला ने सैलाब की वजह से नकली मकानी पर मजबूर हुए अफराद को खित्ते अराजी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट भी फराहम किए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंडौली में आज शदीद बारिश की वजह से स्कूल बंद रहे। इस दौरान चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सतह आब में मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद हुक्काम को सैलाब से मुतासर इलाकों में रह रहे बाशिंदों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील करनी पड़ी। इधर तबाहकुन नेपाल तिब्बत सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,252 हो गई है। कुदरती आफात के खतरात में कमी और बंदोबस्त से मुतालिक नेपाल की अथॉरिटी NDRRMA की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 4,216 अफराद अब भी लापता हैं। अथॉरिटी ने बताया कि चितावान जिले से 355 लाशें, नवल परासी ईस्ट से 218, नवल परासी वेस्ट से 208, जिसमें भारत से बरामद की गई 18 लाशें शामिल हैं और जिन्हें नवल परासी वेस्ट के सुपुर्द किया गया है, नीज नुआकोट से मिली 177 लाशें शामिल हैं। चीन की जानिब सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। नेपाल सरहद के नज़दीक तिब्बत में गिरोंग काउंटी इस सैलाब से मुतासिर हुआ और कल तक की खबर के मुताबिक यहां से 541 लोग लापता हैं। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में अहल खाना ने कुशा घास से पुतले बनाकर अपने उन रिश्तेदारों की आखिरी रसूमात अदा की जिनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। अब इस बात की उम्मीदें कम हो गई हैं कि वो जिंदा बचे होंगे। भोटे कोशी दरिया के बाला इलाकों में आज भी लगातार बारिश होती रही, इसलिए अंदेशा है कि भोटे कोशी और त्रिशूली दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाएगी। नीज रसुआ और नुआकोट जिलों में बह रहे छोटे दरियाओं और नहरों में भी पानी की सतह बढ़ जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और शुमाल मशरकी खित्तों में कुछ मकामात पर कल तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और अंडमान और निकोबार जजायर में भी अगले दो दिनों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। इसी तरह का मौसम कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वस्ती महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली के कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, जबकि कौमी राजधानी दिल्ली के कुछ मकामात पर आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान कृष्ण की जिंदगी और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफियाना विरासत में नई रूह फूंकी है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि श्रीमद भगवद गीता के जरिए दी गई भगवान कृष्ण की तालीमात वक्त की गर्द से पाक इंसानियत की तरगीब का जरिया बनी रहेंगी, जिसे इंसानियत को मुश्किल घड़ी में अखलाकी इकदार पर साबित कदम रहते हुए दानिशमंदाना फैसले करना मुमकिन हो सकेगा। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार रवादारी, खिदमत और फर्ज के तई वक्फ होने जैसी इकदार के तई तरगीब देता है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाजे को खत्म करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने यूक्रेन के अपने हमनसब एंद्री सिबिहा से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मुसलसल अपने मौकफ पर कायम है कि यह दौर जंग का दौर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह के तनाजात के दौरान बहरी जहाजों पर हो रहे हमलों के मसले को उजागर किया और कहा कि इससे आलमी खित्ते जुनूब के कई ममालिक पर मुख्तलिफ एतबार से असर पड़ा है, जिससे तेल, खाद और खाने की अशिया की कमी हो गई है। भारत को एक आलमी ताकत करार देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा एंद्री सिबिहा ने कहा कि उनका मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के लिए की गई अपील का खैर मकदम करता है। दुबई में जारी खवातीन के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप एक एक मुकाबले में हांगकांग ने टॉस जीता और भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की जानिब से वो टीम खेल रही है जिसने इतवार के रोज खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड को

0: रन से शिकस्त दी थी। आज के मैच में अगर भारत की टीम जीत हासिल करती है तो हरमनप्रीत कौर की जेर क्यादत भारत की टीम 8 ममालिक पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की है। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन को बढ़ाने से भी इत्तेफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सैमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: اینجا دهلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الا ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برا می اندازیم.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति

0: रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi.

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है अधिकार। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली।
1: वाह वाह वाह।
0: मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म शिक्षा से। आवाज़ दी है यशुदास ने, संगीत है पप्पी लाहिरी का और गीतकार हैं गौहर कानपुरी।

टोकरियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, हंसी बर्मन का संगीत था। लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म स्वामी से। आवाज़ें लता मंगेशकर की है और संगीत है राजेश रोशन का।

जहां अपने आप सर छुप जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही है प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत है प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए स्वयंवर फिल्म का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ है गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।

0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and

0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन

की बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की

0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS, member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of

पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं। अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 4:20 हो चले हैं। ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का, जिसमें आज आप सुनेंगे सीरगाजी गोविंदराजन का राग कल्याणी में गायन। आदि ताल में निबद्ध रचना श्रीरंगम रंगा स्वामी पिल्लई की है। वॉयलिन पर आपका साथ दिया है थिरुप्पर कडल S. वीरा राघवन ने।

इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म आज यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं भजन, शबद, नाथ और देशभक्ति संगीत। समय रहेगा प्रातः 6:10 का। रात 6:40 का समय रहेगा चिंतन का, जिसमें आज आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। समय रहेगा रात 6:40 का। हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 38।

6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचार का, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7:10 का समय रहता है कार्यक्रम संगीतिका का। आज के इस कार्यक्रम में आप

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात समय रहेगा 8 बजे का और मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकते हैं 8:15 पर। उर्दू में खबरों का समय रहेगा 8:30 का और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुबह सुन सकते हैं आप 8:45 पर। आज आप सुनेंगे विजय कुमार का राग गुजरी तोड़ी में बांसुरी वादन।

0: ये थी सुबह की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5 बजने को है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरियोकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय

0: आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है, वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देशभर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth observation spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues related to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Vice President C.P. Radhakrishnan, who is also an ex-officio chancellor of Punjab University, will visit the university in Chandigarh today. He will inaugurate the Advanced Instrumentation Facility at Sophisticated Analytical Instrument Facility, Central Instrumentation Laboratories. The festival of Janmashtami is being celebrated today. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the occasion. In her message, the

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है। मतलब इस अभ्यास को करने

से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।